0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईक की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9056569536 या 9056557902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 97076575।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं,
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यह होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।
9: Studio 5, an Islamic record label. For more updates, subscribe channel and press bell icon.

0: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
0: क्यों क्या हुआ है?
6: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान रेडियो रिद्म 90.4 FM सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
11: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: रामू हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये है बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा।

रात अचानक पत्थरबाजी होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को लेकर पुलिस जाँच कर रही है। घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की सुरक्षा वहाँ आसपास निगरानी के लिए बढ़ा दी गई है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई की गई। इस दौरान आए हुए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी अपनी समस्याएं पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दोनों ही पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में जनता की समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता उदय नारायण पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में अधिवक्ता उदय नारायण पांडे ने पुलिस अधीक्षक से आज मुलाकात कर आवेदन देते हुए सहायता की गुहार लगाई। इस मामले में पीड़ित उदय नारायण पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भूमि विवाद को लेकर कुछ भू माफिया उनकी हत्या करने की योजना बना रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसको लेकर लिखित आवेदन में उन्होंने नामजद भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक से सहायता की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में विनय कुमार और मुन्ना कुमार, ये दोनों हाकिम महतो के पुत्र हैं और बरहिमा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन पर हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज है और इसी मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 2,980 लीटर विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन जांच अभियान के दौरान गरौली मठिया कब्रिस्तान के पास गुप्त सूचना के आधार पर सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रक का जांच पड़ताल शुरू किया तो इस गाड़ी के अंदर से 2,980 लीटर विदेशी शराब मिली। इस मामले में ट्रक को जब्त किया गया है और पुलिस वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध अब प्राथमिक की दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भी 328 लीटर से अधिक विदेशी शराब को बरामद किया है और एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भटवां ओवर ब्रिज से सीसवा जाने वाली मोड़ के पास इस कार को पकड़ा। इस गाड़ी के अंदर से 228 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली जिसके बाद पुलिस ने कार को जब्त किया है। किसी तस्कर के गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। पुलिस ने अब वाहन के मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आज गोपालगंज के पुलिस लाइन में लाइन डे का भी आयोजन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने तमाम पुलिस कर्मियों की समस्याओं पर सुनवाई करते हुए उसको निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कई थानों का भी औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में मीरगंज, फुलवरिया, सिरीपुर और कटिया थाने का औचक निरीक्षण गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, गुंडा पंजी, अपराध निदेशिका इत्यादि का अवलोकन किया गया। हाजत, कुर्की निष्पादन, वाहन जाँच अभियान तथा शराबबंदी से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, अपराध नियंत्रण, शराब एवं अन्य अवैध कारोबार के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। इधर 24 घंटों में गिरफ्तार कुल 38 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसमें हत्या के प्रयास, चोरी के मामले और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही शराब के नशे में भी लोगों को पकड़ा गया और शराब की तस्करी में भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान यातायात पुलिस ने भी 2 लाख से अधिक जुर्माना अलग अलग वाहन चालकों से वसूल किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार यातायात पुलिस भी वाहन जांच अभियान चला रही है तथा अवैध वाहन चालकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इधर विजयपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में भी पुलिस अधीक्षक ने कोरिया गांव में पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ एवं विजयपुर के थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने कांड के शीघ्र उद्भेदन को लेकर

0: और अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के सदर SDPO वन का हुआ तबादला। बरौली विधायक मंजीत सिंह बने उप मुख्य सचेतक। अनंत सिंह को अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत। भाला गोद कर एक बुजुर्ग की कर दी गई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और केमिकल से नोट दुगुना करने वाले एक गिरोह के 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
2: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
2: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
1: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: सुनो दिल से।
11: आप सुन रहे हैं

0: हमारा भारत जिसकी प्राकृतिक और भौतिक संपन्नता किसी से छिपी नहीं है, सदियों से इसे हथियाने की कोशिशें होती ही रही हैं, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने किसी को कामयाब होने नहीं दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहाने वालों में राजपूत कभी पीछे नहीं रहे। आज हम इतिहास में ऐसे ही अमर एक शूरवीर की गौरव गाथा सुनते हैं। बारहवीं सदी भारत में मुगलों के आने से बहुत पहले चौहान वंश के राजा थे राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान, जो अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे और जिन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान बहादुर योद्धा, कला के पारखी, न्यायप्रिय और प्रजा के शुभचिंतक थे। उनके राजकाल में दिल्ली की खुशहाली अपनी चरम सीमा पर थी, जो एक विदेशी की नजर में खटक रही थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जो दिल्ली को हथियाने के लिए हमले की तैयारी कर रहा था।
1: मेरे जाबाज सिपाहियों, हमें दिल्ली की सारी दौलत लूटकर गजनी लाना है, फिर हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाएगा। शाबाश सिपाहियों, दिल्ली अब हमारी होगी।
2: जलकार हो, हम दिल्ली जीत कर रहेंगे।
3: हमारी होगी।
0: जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर शहाबुद्दीन गौरी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली के शेर को पछाड़ना उसके बस की बात नहीं है। गौरी की जबरदस्त हार हुई, उसे बंदी बना लिया गया, मगर उदार पृथ्वीराज चौहान ने शरणार्थी शहाबुद्दीन को मारा नहीं और ये वचन लेकर छोड़ दिया कि वो फिर कभी दिल्ली की तरफ नहीं देखेगा। उसी समय कन्नौज में राजा जयचंद का राज था। सत्ता के लोभी जयचंद ने दरबार में मन की बात रखी।
4: हम सम्राट बनना चाहते हैं।
5: महाराज, इसके लिए आपको पहले राजसूय यज्ञ करना होगा।
4: ये ठीक रहेगा। जो भी हमारी सत्ता का विरोध करेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। सभी राजाओं को सूचित किया जाए, उन्हें हमारी सत्ता स्वीकार करनी ही होगी।
5: जो आज्ञा महाराज।
0: सभी राजाओं को सूचना भेजी गई। सभी ने जयचंद की सत्ता के आगे घुटने टेक दिए, सिवाय एक के, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज नरेश का संदेश सुनकर पृथ्वीराज बहुत नाराज हुए। पृथ्वीराज के मित्र राजकवि चंद बरदाई ने स्थिति संभाली और संदेशवाहक को खाली हाथ लौटा दिया। जयचंद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा।
4: उस घमंडी की इतनी हिम्मत, वो अपने आप को क्या समझता है। सेनापति, तुरंत सेना तैयार की जाए। हम स्वयं अभी दिल्ली पे हमला करेंगे।
5: लेकिन महाराज, राजसूय यज्ञ का समय सिर पर है। अभी हमारे पास दिल्ली पर हमला करने का समय नहीं है।
4: ठीक है, यज्ञ के बाद हमारी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी करना है। पूरे देश के राजा आएंगे, तभी राजकुमारी संयोगिता अपना वर चुनेंगी। हाँ, उस अहंकारी पृथ्वीराज को स्वयंवर में ना बुलाया जाए।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: उस दुस्साहसी को उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। स्वयंवर पंडाल में द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान का पुतला खड़ा किया जाए।
5: जो हुक्म महाराज।
0: मगर पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रियता और वीरता का गुणगान जयचंद की बेटी संयोगिता का दिल पहले ही जीत चुका था। उधर महल में स्वयंवर की खुशियां मनाई जा रही थी।
6: हमारी राजकुमारी कितनी भाग्यवान है ना।
7: हाँ, देश देश के शूरवीर राजा स्वयंवर में पधारेंगे, मगर भाग्यवान तो वो राजा होगा जिसके गले में हमारी सुंदर राजकुमारी संयोगिता जयमाला डालेंगी।
6: हाँ।
7: क्यों राजकुमारी जी, ठीक कहा ना मैंने।
8: हटो भी, तुम लोग हमें छेड़ो मत।
6: अरे रे रे, राजकुमारी तो शर्मा गई, सुंदर सुंदर गाल गुलाबी हो गए। हाय, लज्जा से नैन झुक गए। देखो देखो
8: अब बहुत हो गया, आज तुम लोग मुझसे पिटोगी।
6: तो अब हमें बताइए ना राजकुमारी, कि शूरवीर के गले में जयमाल डालेंगी आप?
7: हाय, कौन होगा वो भाग्यवान?
6: बताइए ना राजकुमारी।
7: पृथ्वीराज चौहान।
6: ये क्या कह रही है राजकुमारी? आपके पिता महाराज जयचंद तो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं।
7: इसीलिए ना कि उन्होंने हमारे पिताजी के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। मगर तुम सब भी जानती हो, उनके जैसा शूरवीर दूसरा कोई नहीं है।
3: पर उन्हें तो स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया है।
7: वो अवश्य आएंगे, हमारा मन कहता है वो आएंगे।
0: गुप्तचरों ने जयचंद की योजना और राजकुमारी संयोगिता के निर्णय के बारे में पृथ्वीराज चौहान को बताया। कन्नौज की राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा पृथ्वीराज पहले ही सुन चुके थे और राजकुमारी को चाहने लगे थे। उन्होंने अपने बचपन के साथी कवि चंद बरदाई को बुलाया।
9: चंद, हमारा सम्मान दांव पे लगा है और हम राजकुमारी संयोगिता से विवाह करना चाहते हैं।
10: मगर आप ये कैसे कर सकते हैं महाराज? जयचंद आपको कन्नौज में पैर नहीं रखने देगा।
9: हमें नहीं देगा, मगर वो आप जैसे कवि कलाकार को नहीं रोकेगा।
10: मगर महाराज,
9: हमने सोच लिया है, हमारे 100 बहादुर सैनिक और हम आपके सेवक के वेश में आपके साथ जाएंगे। कन्नौज चलने की तैयारी शुरू कीजिए।
10: जो आज्ञा महाराज।
0: कन्नौज में स्वयंवर की तैयारी पूरी हो चुकी थी, सभी राज्यों के शूरवीर राजा पहुंच चुके थे। जब सेवक बनकर पृथ्वीराज चौहान और चुने हुए सैनिकों के साथ कविराज चंद बरदाई कन्नौज पहुंचे, तो उन्हें खबर मिली कि पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनके पुतले को स्वयंवर पंडाल का द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया है। ये सुनकर पृथ्वीराज ने तलवार खींच ली।
11: जयचंद का इतना साहस?
10: महाराज, महाराज हमें धीरज से काम लेना होगा, हम कुछ सोचते हैं, आप धीरज रखिए।
0: चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक योजना बनाई और स्वयंवर की घड़ी का इंतजार करने लगे। क्या थी वो योजना, स्वयंवर के पंडाल में उस दिन क्या हुआ, मैं आपका दोस्त आपको बताऊंगा, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहिए भारत की अमर कहानियाँ।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
14: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
14: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
18: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
19: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
20: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
19: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
18: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
19: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
18: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
19: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
18: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
23: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
22: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
23: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
24: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
0: अभी तक आपने सुना 12वीं सदी में चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे, उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ रखा, सभी राजाओं ने अधीनता मान ली सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, बस जयचंद पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ गया, उसने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और उसका पुतला बनवाकर स्वयंवर पंडाल के द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया, लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपना पति मान लिया था। ये जानकर पृथ्वीराज चौहान भेष बदल कर कन्नौज पहुँचे और एक योजना बनाई। अब आगे स्वयंवर पंडाल में सभी राजा पहुंच चुके थे, राजकुमारी संयोगिता ने अपनी सखी सहेलियों के साथ स्वयंवर पंडाल में प्रवेश किया, महाराजा जयचंद ने राजाओं का स्वागत किया।
25: हमारी बेटी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पराक्रमी राजाओं में जिस शूरवीर के गले में राजकुमारी जयमाल डालेंगी वो भाग्यवान हमारा जामाता होगा। आओ बेटी।
0: राजकुमारी संयोगिता जिस राजा के पास से निकलती उस राजा के सेवक राजकुमारी को लुभाने के लिए राजा की गौरव गाथा सुनाते रहे, पर धीरे धीरे राजकुमारी पंडाल के द्वार तक पहुंच गई जहां पृथ्वीराज का पुतला था। अचानक राजकुमारी ने उस पुतले के गले में जयमाल डाल दी, तभी उस पुतले के पीछे छिपे पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को तूफान की तेजी से उड़ा ले गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। महाराज जयचंद चिल्लाए,
25: रोको रोको, पकड़ो उसे वीरो, तुम्हारी आंखों के सामने वो हमारी बेटी को ले जा रहा है। सैनिकों, हम अभी दिल्ली पर आक्रमण करेंगे।
26: क्षमा महाराज, यहाँ कोई ऐसा राजा नहीं जो उनसे टक्कर लेने की हिम्मत कर सके।
25: कायर है, डरपोक है सबके साथ।
0: उधर राजकुमारी संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुँचे, सभी ने नई महारानी संयोगिता का स्वागत किया। खुशियों का दौर कई दिनों तक चलता रहा और वहाँ कन्नौज में अपमान की आग में जयचंद छटपटाता रहा। फिर एक दिन उसे आशा की एक किरण दिखाई थी और फिर दरबार में।
27: महाराज, हम सब आपकी बेचैनी समझते हैं, लेकिन अब राजकुमारी संयोगिता दिल्ली की महारानी है। अब भारतवर्ष का सबसे बड़ा शूरवीर पृथ्वीराज चौहान आपका संबंधी है, चाहे आप माने या
25: नहीं। हम नहीं मानते, जब तक हम अपने अपमान का बदला ना ले लें हमें चैन नहीं आएगा। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। सेनापति, हमने सुना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज का कट्टर दुश्मन है?
26: हाँ महाराज, वो नादान बार बार आक्रमण करता है, हर बार हारता है मगर हार नहीं मानता। सुना है वो फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है।
25: इस बार वो नहीं हारेगा, हमारी सेना का साथ होगा तो हौरी की विजय निश्चित है। मारा जाएगा घमंडी पृथ्वीराज।
27: ये क्या कह रहे हैं महाराज? हमारी आपसी फूट का, घरेलू झगड़े का वो विदेशी लुटेरा गौरी भरपूर लाभ उठाएगा।
26: और फिर महाराज, क्षमा करें, क्या आप अपनी बेटी संयोगिता का सुहाग उजाड़ेंगे?
25: एक राजपूत का मान सम्मान सारे संबंधों से ऊपर होता है। अगर हमने राजपूत के मस्तक से अपमान का कलंक नहीं धोया तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा।
27: फिर भी महाराज, एक बार सोच लीजिए।
25: हमने सोच लिया है, हमारी बेटी संयोगिता का अपहरण करने वाले को जब तक सबक न सिखा दे हमें चैन नहीं आएगा। हमारी मित्रता का संदेश जल्द से जल्द मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी को पहुंचाया जाए।
27: जो आपकी आज्ञा महाराज।
0: जयचंद बदले की आग में अपना विवेक खो चुका था, उसने किसी की बात नहीं सुनी। कन्नौज की मित्रता का संदेश पाकर शातिर मोहम्मद गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
2: चलो, हमारे लिए तो ये अच्छा ही है, उनकी फूट का फायदा हम उठाएंगे। अब आएगा असली मजा, दिल्ली के शेर का शिकार करेंगे। दिल्ली के खजाने पे कब्जा करने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमले की तैयारी की जाए।
0: मोहम्मद गौरी की फौज जयचंद की सेना के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़ी। मगर क्या दिल्ली इस हमले के लिए तैयार थी? वहाँ दिल्ली दरबार में जयचंद के विद्रोह और गौरी के हमले की खबर से खलबली मच गई। तुरंत जवाबी हमला किया गया। तराइन के मैदान में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी आमने सामने थे। जहाँ पिछली बार गौरी पूरी तरह हारा था, मगर इस बार गौरी का पलड़ा भारी लग रहा था।
2: पृथ्वीराज को घेर लो, आगे बढ़ाओ।
11: धोखेबाज गौरी, इस बार तो बच के नहीं जा सकता। पिछली बार जाने दिया, वो तुम्हारी भूल थी।
2: भूल? देखो, जंजीरों से बांधो, पृथ्वीराज को बंदी बना लो। शाबाश शाबाश सिपाहियों, हमने जंग जीत ली, दिल्ली पे हमारा कब्जा है, जो चाहो लूटो छीन लो। मुबारक हो जयचंद मेरे दोस्त, हमने दिल्ली जीत ही ली।
25: बधाई हो सुल्तान गौरी, हमारा बदला पूरा हुआ, अब हम चैन से सोएंगे।
0: गौरी के सैनिकों ने दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाई। जयचंद और मोहम्मद गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कैदी पृथ्वीराज को गौरी के सामने लाया गया।
2: अब कहो पृथ्वीराज, ओ माफ करना, दिल्ली के शेर महाराज पृथ्वीराज चौहान, बेड़ियों में कैसा लग रहा है? अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए?
11: जैसा हमने आपके साथ किया था।
2: तुम्हारे यहाँ दुश्मन को माफ करने का रिवाज होगा, हम दुश्मन को खत्म करने में यकीन करते हैं।
11: तो क्या झूठा वचन देना, धोखाधड़ी करना भी तुम्हारी आदत है?
2: हाँ हाँ, ये जंग है, जंग, और जंग में सब जायज होता है। एक काम करते हैं, हम तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हैं, बशर्ते तुम हमारे गुलाम बनो।
11: तुम्हारी गुलामी, इससे अच्छा है कि हम मौत को गले लगा लें।
2: ओहो, ये तेवर, घबराओ नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी हम जरूर पूरी करेंगे। मगर इतनी जल्दी क्या है हा? अभी हम गजनी जाएंगे, हमारी जनता को भी तो हमारा सबसे बड़ा शिकार देखना चाहिए, है कि नहीं?
11: तुम्हें तुम्हारी करने का दंड जरूर मिलेगा गौरी।
2: कौन देगा दंड? तुम दोगे? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? तुम एक सुल्तान के गुलाम हो। आंखें नीचे,
3: एक राजपूत योद्धा की आंखें केवल अपने भगवान के सामने झुकती हैं, या फिर मरने के बाद मरने के डर से आंखें झुकाने वाले तुम जैसे होते हैं।
2: खामोश उस्ताक, सिपाही सलार, धर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ डालो।
4: जी हुजूर।
2: अब दुनिया देखेगी कि दहाड़ने वाला शेर भीगी बिल्ली कैसे बनता है। मगर अफसोस, तुम अपनी मौत का तमाशा नहीं देख सकोगे, है ना महाराज जयचंद?
5: वाह मोहम्मद गौरी, बहुत अच्छे। देखिए, हमने अपना वचन निभाया, अब आपकी बारी है। गजनी लौटने से पहले हमें दिल्ली की राजगद्दी सौंप दीजिए।
2: हाँ हाँ जरूर जयचंद, आप साथ न देते तो हम पृथ्वीराज को कभी हरा नहीं पाते। आपको तो इनाम मिलना ही चाहिए।
5: धन्यवाद मोहम्मद गौरी, हमें आपसे यही आशा थी।
2: सिपाहियों, इस गद्दार को बंदी बना लो।
6: अरे ये क्या, ये सब क्या है? शाहबुद्दीन, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं कौन है हम।
2: तुम कन्नौज के राजा थे, वो कल की बात है, आज मेरे बंदी हो। जो राजा अपनी ही औलाद की खुशियों में आग लगाए, झूठे घमंड में अपने ही लोगों से दुश्मनी करे, उस गद्दार को राजा बनने का कोई हक नहीं। जो आज अपने मादरे वतन से गद्दारी कर सकता है उसका क्या भरोसा। ले जाओ इसे, इसका सर काट के दिल्ली के चौराहे में लटका दो।
0: दिल्ली में बर्बादी का तांडव करने के बाद मोहम्मद गौरी की फौज भरपूर दौलत और बंदी पृथ्वीराज के साथ गजनी लौट गई।
2: हमारे प्यारे गजनी वासियों, ये जंजीरों में जकड़ा कैदी कोई और नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान है, जिसने पहले कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई। मगर देखो, आज वो यहाँ अकेला, मजबूर और अंधा कैदी बनकर खड़ा है।
0: उधर दिल्ली में जनता बहुत डरी हुई थी। एक गुप्तचर से जब गजनी का हाल मिला तो दिल्ली दरबार में राजगुरु जी चुप न रह सके।
7: उस कपटी जयचंद को उसकी गलतियों की सजा तो मिल गई, लेकिन वो दुष्ट हौरी हमारे महाराज पृथ्वीराज की जान भी ले सकता है।
8: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चंद बरदाई अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं गजनी जाऊंगा, और अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ही आप सब दुष्ट मोहम्मद गौरी की मृत्यु की खबर सुनेंगे।
0: इस तरह पृथ्वीराज की सहायता का प्रण करके चंद बरदाई गजनी के लिए निकल पड़े। क्या वो अपने मित्र की मदद कर पाए, मैं आपका दोस्त को बताऊंगा। मगर एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनते रहिए भारत की अमर कहानियाँ।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
28: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
28: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
28: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
29: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
30: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
29: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
30: बिल्कुल, बिल्कुल, माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
12: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
12: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
13: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
13: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
13: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम 8:00 से 2:00 PM तक।
13: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
12: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
12: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
12: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
12: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
17: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
17: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
17: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
18: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
19: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
18: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
0: अब तक आपने सुना, 12वीं सदी में दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर बुरी नजर रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने कई नाकाम हमले किए। उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उनके कट्टर दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। गौरी ने दिल्ली पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। गौरी ने गद्दार जयचंद को मार डाला। पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उन्हें गजनी ले गया। ये सुनकर चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए निकल पड़े। अब आगे चंद बरदाई को मोहम्मद गौरी का बर्ताव देखकर हैरानी हुई।
2: आओ आओ राजकवि चंद बरदाई, दोस्त का प्यार खींच लाया है। पृथ्वीराज तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। चलो हम खुद तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे जिगरी दोस्त से कराएंगे। देखो तो पृथ्वीराज, तुम्हें देखने कौन आया है? अरे अरे अरे अरे अरे अफसोस, मैं तो भूल ही गया। तुम अंधे हो।
3: महाराज पृथ्वीराज, मेरे मित्र चंद, ये क्या हो गया?
2: पृथ्वीराज, मैं तुम्हारे इस दोस्त को तभी मौत के घाट उतार देता जब इसने गजनी में कदम रखने की जुर्रत की, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था ये तुम्हें देखे और जाकर दिल्ली में बताए मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली के महान महाराजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी मौत से कैसे बदतर बना दी है। हम चलते हैं।
3: मित्र चंद, मित्र, ये सब क्या हो गया? मैं मरने से नहीं डरता, तुम जानते हो, पर पहले मुझे उस दुष्ट मोहम्मद गौरी की मौत चाहिए।
11: आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे पास एक योजना है महाराज, आप गौरी से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। आपकी शब्द भेदी निशानेबाजी किस दिन काम आएगी?
3: मगर चंद, ये कैसे होगा? मैं देख नहीं सकता, मुझे कैसे पता चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है?
11: वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
0: सब कुछ तय करके चंद बरदाई मोहम्मद गौरी के दरबार पहुंचे।
11: सुल्तान, जाने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे महाराज पृथ्वीराज चौहान से मिलने का मौका दिया।
2: जाओ और दिल्ली वालों को बताओ कि उनका शेर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की कैद में कैसे पड़ा है।
11: सुल्तान, मगर निशानेबाजी में वो अभी भी आपको मात दे सकते हैं।
2: सुना वजीरे आला, अंधा निशानेबाजी में हमें मोहम्मद गौरी को हराएगा।
11: जी हाँ, चाहे तो परीक्षा ले लीजिए।
2: हाँ हाँ, चलो ये भी देख लेते हैं। पर याद रखो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर काट देंगे।
0: मैदान में पूरा गजनी जमा हो गया। बंदी पृथ्वीराज चौहान को वहाँ लाया गया। ऊंचे आसन पे मोहम्मद गौरी बैठा था।
2: गजनी वासियों, सुना है दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान एक हुनर जानते हैं। वो बिना देखे ही सही निशाना लगाने में उस्ताद है।
11: हाँ सुल्तान, यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी मेरे महाराज की इस कला को देखकर जीवन भर नहीं भूल पाएगा।
2: ठीक है, तारीफ बंद करो, अपने महाराज से कहो कुछ करके भी दिखाए।
0: चंद बरदाई की गुजारिश पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज का तीर कमान मंगवाया। अब पृथ्वीराज तैयार थे।
20: बंदी, निशाना लगाओ।
2: चंद बरदाई, तुम्हारे महाराज ने कमान क्यों झुका ली?
11: सुल्तान, पृथ्वीराज आज भी दिल्ली के राजा हैं। वो किसी और का आदेश नहीं सुनेंगे। आपको ही उनसे निशाना लगाने के लिए कहना होगा।
2: इतनी अकड़, अगर निशाना नहीं लगा तो शान मिट्टी में मिल जाएगी, याद रखना।
5: ये तो समय ही बताएगा।
2: देखते हैं, तीन तीर तीन निशाने, तैयार हो जाओ पृथ्वीराज, तीर चलाओ, लगाओ निशाना।
0: पृथ्वीराज के दो तीर ठीक निशाने पर लगे। ऐसी सटीक निशानेबाजी देखकर सभी हैरान थे, मोहम्मद गौरी भी।
2: तमाशा अच्छा है चंद बरदाई, अब तीसरा और आखिरी तीर चलाने से पहले तुम भी अपनी कला दिखा दो, कोई तुकबंदी ही सुना दो।
11: अवश्य। पृथ्वीराज की वीरता का सुन लो करूं बखान, जो भारत वर्ष की शान और दिल्ली की जान। अब सुनो पहेली पृथ्वी, सुनो लगाकर कान, चार बांस और 24 गज अंगुल 8 प्रमाण, उसके ऊपर है सुल्तान मत चूको चौहान।
2: पृथ्वीराज चलाओ तीर, लगाओ निशाना।
0: कमान से तीसरा तीर सीधे ऊंचे आसन पे बैठे मोहम्मद गौरी को जा लगा। चारों तरफ हड़कंप मच गई।
6: पकड़ो उन्हें।
7: हर महादेव। पृथ्वीराज चौहान की जय। हर हर महादेव।
5: हर हर महादेव। मेरे मित्र, मैंने बदला ले लिया।
7: पृथ्वीराज चौहान की जय।
5: चंद, ये अफगानी हमें छोड़ेंगे नहीं। शत्रु के हाथों मरने से अच्छा है हम मित्र के हाथों मरे।
7: हाँ मित्र, मैं तैयार हूँ।
5: पृथ्वीराज अमर रहे, भारतवर्ष अमर रहे।
0: हमेशा अपनी शर्तों पर जीने वाले वीर ने अपनी ही शर्त पर मौत को गले लगा लिया। भारतवर्ष के एक सपूत ने वीरगति पाली, जो एक नेक दिल इंसान, एक सच्चा प्रेमी, अभिन्न मित्र और एक कुशल शासक था, जिनकी प्रेम गाथा और वीर गाथा बड़े गर्व से सुनी और सुनाई जाती है। इस महान हस्ती को हमारा नमन। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम इतिहास की एक और गौरव गाथा का आनंद लेंगे, भारत की अमर कहानियाँ।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
22: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
23: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
24: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
22: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
24: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
22: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
24: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
22: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
24: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
22: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-72-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
9: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
15: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
13: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
15: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
13: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
15: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
25: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
13: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
26: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
6: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
26: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
6: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
26: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।

0: क्या आप इस मिशन के लिए तैयार है?
1: यस सर।
0: क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
1: यस सर।
0: कमांडर्स, हु आर वी?
1: इंडियन आर्मी सर।
0: हाउ इज द जोश?
1: हाई सर।
0: हाउ इज द जोश?
1: हाई सर।
0: अच्छा, हाउ इज द जोश?
1: हाई सर।
2: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
5: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। ओर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
6: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो

0: को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में

0: प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: एडमिशन फ्री
2: कहाँ पर?
3: अरे सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
13: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
14: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
13: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
14: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश जाता है।
13: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
14: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।
11: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
12: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554 94 53
5: और 90 97 61 60 02।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करें 87 894 18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपए से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगा दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि शुल्क वृद्धि अनिवार्य हो तो विद्यालय सुसंगत प्रावधानों के तहत ही ऐसा करेंगे। उन्होंने अन्य प्रतिबंधित शुल्कों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। निजी विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्कों का विवरण विद्यालय के सूचना पट और वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि विद्यालय पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म का पैटर्न बार बार नहीं बदलेंगे। आवश्यकता होने पर विद्यालय स्तर पर गठित शिक्षक अभिभावक संघ से इसकी अनुमति लेनी होगी। अभिभावक सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से पुस्तकों और पठन पाठन सामग्री खरीद सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र छात्रा को शुल्क बकाया रहने की स्थिति में कक्षा परीक्षा अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इसके तहत विभाग के 100 दिनों के कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि TRE4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने जनगणना कार्यों के साथ अध्यापन की अनिवार्यता पर विचार करने की भी बात कही। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पटना स्थित विभागीय कमांड कंट्रोल सेंटर से वैशाली और अररिया जिला अस्पताल की ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग की। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर चल रहे इलाज का फीडबैक लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में आने वाले मरीजों को सुविधाओं की जानकारी नियमित रूप से देने और शिकायत तथा सुझाव के लिए IT आधारित फीडबैक व्यवस्था विकसित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित समय से पहले तैयारी करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कटाव निरोधी कार्यों में तेजी लाने, तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने और बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुखाड़ वाले इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान में प्राप्त सभी आवेदनों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने 31 मई तक प्राप्त सभी आवेदनों को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही श्री जायसवाल ने एग्री स्टैक अभियान को देखते हुए 6,60,000 जमाबंदियों में सुधार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसानों को बिहार कृषि ऐप से हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही मगही, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका में भी खेती की जानकारी मिलेगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने बताया कि ऐप पर इस साल के अंत तक 80 लाख किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य है। राज्य के सभी सरकारी विभागों में किराए पर चलने वाले डीजल पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। फैसले को अमल में लाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में नए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को पटना और नालंदा तथा विजेंद्र प्रसाद यादव को सारण जिले का प्रभारी बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को पूर्वी चंपारण और शिवहर, जबकि कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को गया जी और गोपालगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 20 सूत्रीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में संबंधित मंत्री अपने आवंटित जिले में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुल्तानगंज नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की पत्नी को नियमानुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्री चौधरी ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि कृष्ण भूषण कुमार की पिछले दिनों अपराधियों ने कार्यालय कक्ष में गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रुपए से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक इस संबंध में दायर रिट याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरि प्रसाद भुयाल और टेक प्रसाद की पीठ ने इस आशय का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल से 100 रुपए से अधिक के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लागू कर दी थी। इसके विरोध में सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द ही नई नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों का सृजन किया है। गृह विभाग के अनुसार सबसे अधिक 27,510 सिपाही और समकक्ष पदों पर बहाली होगी। वहीं दारोगा के 20,937 पद हैं, इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि 10,468 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत आर्मी भर्ती कार्यालय दानापुर ने ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा पटना और आरा में आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा में पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर, सीवान और सारण जिले के लगभग 48,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTE की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के अमृतसर स्थित खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे बिहार के छात्रों पर आपराधिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। घटना को लेकर 300 छात्रों ने पुलिस में लिखित शिकायत की है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
1: दिनांक 16 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर आज सुबह मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री पूजा की जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। पटना की NDPS एक्ट की अदालत ने मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के दोषी अब्दुल करीम, चंदन यादव और प्रवेश कुमार को 13-13 साल कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव से पुलिस ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 95 लाख रुपए के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को बांका जिले के पंजवारा से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर SSP और इमिग्रेशन विभाग की टीम ने एक सोमालियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अहमद फरा के रूप में हुई है, जो बिना वैध कागजात के सीमा पार नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिया जिले की मरंगा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 91 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 585 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। शिवहर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रूपये से अधिक बढ़े। दैनिक जागरण लिखता है, निजी स्कूलों में भी एडमिशन शुल्क पर रोक। प्रभात खबर ने लिखा है, नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को, अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित एग्जाम। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पीएम मोदी की मेगा डील, यूएई से 48,000 करोड़ निवेश, एलपीजी करार भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई सीनियर आईएएस अफसर का तबादला। आज अखबार लिखता है, सूबे में अब मध्य माह की भी होगी पूरक परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर करिया अधिभार लगाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पुनर्नामांकन शुल्क लेने पर रोक लगाई। विद्यालयों को सभी प्रकार के शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने भारत में 100 रूपये से अधिक के सामान की खरीदारी पर भंसार वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश। और बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403। सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
10: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
9: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
10: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
9: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
11: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला। हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
13: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
14: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
16: कहाँ पर?
15: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
16: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
15: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
16: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
15: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
17: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल है।

0: के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिंझिन के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, प्रयागराज से मैम।
1: जी, कैसे हैं मनोज जी?
2: ठीक है मैम
1: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है मनोज जी?
2: मैंने अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है
1: जी। और से बताइए, घर परिवार आपका कैसा है?
2: परिवार तो सही है, और जो है पापा हैं, पापा का दुकान रखे हैं, और बाकी घर परिवार तो अभी सही है। आगे हम जो है कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं बीएड के लिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब बीएड के लिए सोच रहे हैं।
1: बिल्कुल बढ़िया है, करिए। और अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पापा का नाम है अनिल सिंह एंड मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
1: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस मैम
1: जी।

0: तो मनोज जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: यस मैम।
0: भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कॉफी का, बी तिलहन का और सी गेहूं का। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम गेहूं।
0: प्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए मनोज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गेहूं को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तिलहन। सही उत्तर होगा तिलहन। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रवि कुमार बोल रहा हूँ। ये कमा
0: जी, कैसे हैं रवि जी?
2: ठीक हूँ मैम
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: बैठे थे।
0: अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है रवि जी आपसे? आपकी
2: 12वीं पास है।
0: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद हो गया है?
2: जारी है मैम, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन।
0: अभी लिए नहीं है?
2: नहीं।
0: ओके, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: मम्मी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम दिनेश।
0: जी, तो ले पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी।

0: रवि जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: कौन सा ऑप्शन?
1: ऑप्शन सी तेलुगु।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है,

0: मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी 1991। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: जी।
0: लॉक कर दो?
1: जी जी
0: जी। तो चलिए रवि जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1971 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो तीसरा प्रश्न आपसे ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, बी 86वां और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 86 संशोधन को लॉक करते हैं। और बताएं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: अच्छा, आपका चौथा प्रश्न ये है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन
0: ए
1: 32।
0: श्योर है?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिजली का बल्ब सर्वप्रथम कब बना था? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम कब बना था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1879 और ऑप्शन सी 1785। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिए मैम।
0: ऑप्शन ए 1821, बी 1879 और सी 1785।
1: 1879 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, लॉक के साथ।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1879 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875 और सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चोर
0: है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए 38वां संशोधन, बी 42वां संशोधन और सी 44वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बयालीसवां संशोधन।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 42वां संशोधन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 44वां संशोधन।
1: ओके
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपीज फाउंडेशन में कॉल किया।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा?
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
13: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
9: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
8: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
9: सेंट जॉन स्कूल, सासा मुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
4: हेलो
14: हेलो
4: हेलो, स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
14: गुड आफ्टरनून मैम।
4: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
14: नाम अनुराधा गुप्ता है, थाने से बोल रहे हैं।
4: नाम एक बार और बताइए।
14: अनुराधा गुप्ता।
4: अनुराधा गुप्ता
14: जी।
4: जी कैसी हैं अनुराधा जी।
14: हम ठीक हैं, आप बताइए।
4: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था अभी।
14: कुछ नहीं, खाना बना रहे थे दोपहर में।
4: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी।
14: जी मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में अब गई हूँ।
4: तो आपका एम क्या है, कुछ सोचा है आपने।
14: टीचर का है, बट देखते हैं क्या हो रहा है।
4: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी।
14: जी
4: जी, तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
14: जी
4: जी, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: जी, पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है।
4: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।

0: सोन राजा जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिनलैंड, ऑप्शन सी
0: फिनलैंड।
1: जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है
0: तो लॉक करो।
1: जी
0: जी तो चलिए अनुराधा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी फिनलैंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: अब से आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921 और सी 1931। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 1921। जी
0: श्योर है?
1: देखिए क्या श्योर नहीं है।
0: ओके चलिए तो दादा जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1921 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत है। सही उत्तर होगा 1911।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलाम जी?
2: बढ़िया है, आपने सुनाइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुलाम जी आपकी?
2: क्या मैम?
0: पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप?
2: मैट्रिक तक किए हैं मैम।
0: मैट्रिक तक किए हैं?
2: जी जी।
0: तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए आप।
2: मेरा अबू का नाम है अब्दुल वाहिद अंसारी, मम्मी का नाम है बीबी उम्मत।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी
0: जी

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम बी होगा,
0: श्रीगुप्त
1: जी।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है लेकिन लगता है।
0: ओके तो लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम
0: जी। आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा और ऑप्शन सी विज्ञान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विज्ञान होगा मैम।
0: विज्ञान होगा
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है लेकिन देखते हैं कोशिश से।
0: ठीक है तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जल संरक्षण जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
13: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
12: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053969015 पे।
14: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
15: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
14: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
15: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
14: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
15: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
16: हाँ मैम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से? जी कैसे हैं जोहार जी?
16: हाँ
0: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
16: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं क्लास में है।
0: किस क्लास में है?
16: 10 क्लास में, 10th में।
0: अभी 10th में पढ़ते हैं।
16: यस मैम।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है?
16: अच्छी चल रही है मैम।
0: जी तो कुछ सोचा है आगे क्या करना है पढ़ाई कंप्लीट करके?
16: नहीं मैम अभी नहीं सोचे हैं।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
16: अम्मी का नाम कह कैसा खातून और अबू का नाम मेरा जन सॉरी।
0: जी लिया गया आपसे आज का पहला प्रश्न।
16: यस मैम।
0: ओके

0: निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी जुजुबा मोम और ऑप्शन सी मधुमोम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी जुजुबा मोम।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
0: मैं तो लॉक करूँ?
1: यस।
0: ओके तो चलिए झार जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी जुजुबा मोम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पैराफिन मोम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सलोनी कुमारी बंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
0: ठीक कैसी है सलोनी जी?
2: ठीक हूँ
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी।
0: जी किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: बीए।
0: बीए चल रहा है? कौन सा ईयर?
2: फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है?
2: हाँ।
0: तो कैसी चल रही है तैयारी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: ओके।

0: नाम बता दीजिए मम्मी पापा का अपना।
1: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर नलका।
0: ओके, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है सलोनी जी, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु।
1: तमिल।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94453
5: और 90-97-61-60-02।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
4: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
3: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
4: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
3: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
3: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी, मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी, कैसी हैं बिमल जी?
10: मैं ठीक हूँ मैम। अभी फोन तो 4 बार की रिंग हो गए, कट गया।
0: जी, मैं कॉल रिसीव कर रही थी और कॉल कट जा रही थी।
10: अच्छा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है।
0: जी जी, हो सकता है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है जी बिमल जी आपकी?
10: ग्रेजुएशन है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
10: अभी तो छूट गया मैम।
0: अच्छा अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
10: मम्मी का नाम प्रभावती देवी है, पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: जी, तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
10: जी मैम।
0: तो चलिए, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है विमल,

0: टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लगी वेयर्ड, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय स्रोत है अब।
1: ऑप्शन ए जॉन लोगी।
0: जॉन लोगी वेयर्ड?
1: जी वेयर्ड।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, देखते हैं।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जॉन लोगी वेयर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: दिल्ली।
0: प्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ब्राजीलिया।
1: ब्राजीलिया?
0: हाँ। ओके हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत मिला।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना।
2: राजन कुमार बोल रहा हूँ थामे से।
0: राजन
2: जी?
0: जी। क्या हाल चाल है राजन जी?
2: ठीक है
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
2: अभी हम ग्रेजुएशन पास करके बीएड कर रहे हैं।
0: जी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आया है।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी पूछिए।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी, मेरे मम्मी पापा का नाम है श्री रामा जी प्रसाद, मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी। तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए माइकल फराडे, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू होता है।
1: ऑप्शन बी होगा, थॉमस एलवा एडिसन।
0: सही श्योर है आप?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए राजन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? ऑप्शन ए मंगलयान 2, ऑप्शन बी नेपच्यून मिशन और ऑप्शन सी शुक्रयान 1। आपका समय शुरू होता है।
1: मंगलयान को लॉक करिए।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 50-50 है।
0: अच्छा, तो लॉक करूं?
1: जी मैम लॉक कीजिए।
0: चलिए तो राजन जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए मंगलयान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा शुक्रयान 1।
1: ओके।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: मैं सोनू दुबे वीरपाटी से बात कर रहा हूँ।
0: ठीक, कैसे हैं सोनू जी?
11: बढ़िया, आपने बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
11: इसमें ड्यूटी हो रहा था।
0: चलिए जी आपसे आज का पहला प्रश्न।
11: जी जी
0: जी

0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सोनू जी।
1: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का नाम सोनू।
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु को फिक्स करें।
0: प्योर है?
1: प्योर नहीं हूँ, कंफ्यूज है तमिल और तेलुगु में
0: जी।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? ऑप्शन ए चेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक और ऑप्शन सी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए ठीक है जी।
0: ऑप्शन ए
1: जी।
0: प्योर है?
1: जी प्योर हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चेथिस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 86वां संशोधन और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छियासीवा
0: है
1: जी, मौलिक शिक्षा का नाम है
0: जी। हाँ, शिक्षा का अधिकार मौलिक।
1: हाँ, 86वां
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 86वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न आपसे ये है, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 226 और सी है अनुच्छेद 368।
1: 368 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज़ कॉम्पिटिशन कॉल से।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज़ कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज़ कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त। और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिंजुम 90.4 FM। नमस्कार।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87 894 18744।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शान

0: पराली जलाए चले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
0: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये है बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी हुई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके

0: भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999। जब

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा? आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
10: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
11: ठीक बा भैया।
12: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
10: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
12: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
10: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
12: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
10: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी दे के।
12: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
13: Excuse me, boss. You have a text message.

कभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का याद। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है और अभी फ़िलहाल अगली गाने के फरमाइश वाला मैसेज शामिल कर देते हैं। मैसेज पहुँचाने वाली मुस्कान गोपालगंज से और गाने की फरमाइश करती हैं कल की मैसेज। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सुनाना चाहते हैं आपको और सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे कुछ मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि ईशा कुमारी रजोखर नवादा से गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सर, नमस्ते, आप कैसे हैं? सर अनुजा कुमारी अमेठी कला से। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मोहब्बत की शाम जला कर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, ज़रा हमसे नज़रें मिला कर तो देखो। गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज कल से आ रही है और आपकी फरमाइश भी पूरा करने की कोशिश रहेगा आज। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हमें भी गाना सुनना है, और इस मैसेज को करती हैं निशा शुक्लवा से। तो आपकी फरमाइश तो हम प्ले किए हैं और यहाँ पे मैसेज भी आपकी तरफ से पहुँचा हुआ है कि थैंक्स। तो आपको कैसे हम सुनाएं? यदि आप लोग सुन चुके हैं तो थोड़ा सा सब्र करें, दूसरे लोगों को भी सुनने का मौका दें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि राम राम सर जी, आज मुझे सॉन्ग सुनना है, ए दिल तू उसे भूल जा। मैसेज करते हैं सनोज जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा

गया है कि हमें गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रमझम 90.4 FM पे मुस्कान जी की।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है एक साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
2: और 9097160002।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और आगे कई मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं भी जुड़ गई हूं और मेरा भी वेलकम कीजिए और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा सलाम बोल लीजिएगा। शबीना खातो फ्रॉम त्रिपुरवा, मामू के घर से, और कहती हैं कि कसम खा के कहो तुमको हमसे प्यार है। मस्ट एंड ए सुपर सॉन्ग, आजकल कसम खाने वाले भी बदल जाते हैं। शबीना बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो MGM सुनने के लिए। आगे मैसेज में लिखा गया है कि हाय सुनो भैया, क्या हाल है, मैं पलक धनिया से और गाना सुनना है। शुक्रिया शुक्रिया, प्लीज सुना दीजिएगा, कोशिश रहेगा। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश कहा जा रहा है कि मेरा भी गाना सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करती हैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और गाने की फरमाइश करती हैं मोहब्बतें मूवी का टाइटल ट्रैक। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।
8: हम जीत गए।

थे रेडियो एम 694 एफएम पे सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे गुलाम हुसैन जी की, और इन्होंने गाने की फरमाइश किए हुए हैं और आगे कुछ दोस्तों को डेडिकेट भी किए हैं, तो इनकी दोस्त हैं। सबसे पहला नाम मशरूम कौसर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौसाद भाई, जगदीप, आयुष, प्रिंस, लक्की, समीर, शाकिब, रुबीना, ब्यूटी, हीना, गुड़िया, साजिदा, गुलशन, सबीना, यास्मिन, सलेहा, आफरीन और अरीशा। सुनो भैया आपको भी, तो चलिए हम भी सुनेंगे और आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है देखा जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को पहुंचाते हैं सुनोज जी, और लिखते हैं कि जहां तुम जाना चाहते हो मैं वहीं से होकर आया हूं, इश्क न करना मेरे दोस्त, मैं वहीं से बर्बाद होकर आया हूं। ओ चलिए, अच्छी सलाह देने के लिए धन्यवाद। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए और साथ में गुनगुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं रंजीत शर्मा, माय लवली वाइफ सीमा शर्मा विद माय लवली बेबी दिव्या शर्मा, तो आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे लाइन में लिखा गया है कि जीते थे कभी हम भी शान से, दिल धड़कता था किसी के नाम से, गुजरे थे हम भी किसी के नाम से, नफरत हो गई मोहब्बत के नाम से, प्लीज़ तेरी यादों की चादर ओढ़ के ये सॉन्ग बजा दीजिएगा, कोशिश रहेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश। ओहो, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी गाना सुना दीजिए। एक एक करके सबकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करना है, एक एक ही गाने तो प्ले कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश हम प्ले करते हैं गुलाम हुसैन की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 694 FM पे, तुमको जन्म जहां।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी, और ये शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि जबरदस्त सॉन्ग, मिसेज करते हैं रंजीत शर्मा। और आगे मिसेज सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स सोनू भैया गुलाम हुसैन, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम पे इस तरह के प्यारे गाने के फरमाइश करने के लिए। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुना दीजिए सर गाना मेरा, और बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं अनुजा कुमारी, और हाँ आप ही के मैसेज हम देख रहे थे और आप ही के गाने प्ले करने वाले थे, तब तक आपका मैसेज दूसरा पहुंचा। इन्होंने गाने की फरमाइश की है, जिस्ट के दोपहरी में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं। और आगे गाने की फरमाइश एक और हमारे श्रोतागण इनके मैसेज से पहले भी किया गया है, लेकिन उन्होंने गाने के फरमाइश जो की हैं वो सीरियल का रिजल्ट निकल रहा है, तो आप उस गाने को नाम बताएं जो हमें मिल सके। और आगे मैसेज और इस मैसेज को करने वाली हैं ईशा कुमारी रजो खरनवादा से, तो आपकी फरमाइश हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं, यदि आपके गाने चेंज होते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: चले चले चले बाजो आ जाओ बाजो।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
4: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
3: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन मटन दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा बर्गर चाट गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
4: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
3: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
4: जहां हर निवाला कहे वाह।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
11: कमाल का शौक रेडियो MC 94.4 FM पे सुन रहे थे। अभी हम सभी और जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं सैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे मैसेज में लिखा गया है कि हाय सोनम बाबू, क्या बात है कि मेरा मैसेज शामिल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी मैसेज भी हम शामिल कर देते हैं और आपकी फरमाइश भी हम पूरी कर देते हैं। और लिखे हुए हैं कि हो सके तो मेरा फिल्म प्रेम बंधा से गाने के फरमाइश करते हैं शोर किशोर जी और लता जी। गाने का बोल देते हैं मैं तेरे प्यार में, डेडिकेट स्पेशल में मैडम जी को और बाकी सभी भाइयों बहनों को। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी आपके पसंद के गाने रेडियो रमछम 90.4 FM पे।

काफी प्यारा संग रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे सुन रहे हम सभी। और आगे बढ़े यहाँ पे आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे सनोज जी की तरफ से पहुंचा हुआ है। और गाने की फरमाइश करते हैं ए दिल तू उसे भूल जा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

फरमाइश का और इस गाने के फरमाइश करने वाले सुनोज जी, अच्छी बात है और अच्छी सोच, और इनके तरफ से कुछ लाइन भी पहुंचा हुआ है और लाइन को हम शामिल कर देंगे और साथ ही साथ एक और हमारे श्रोतागण हैं उनकी फरमाइश हम पूरी करके ही जाएंगे। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, तेरी यादों की चादर ओढ़ के, और स्पेशल डेडिकेट करते हैं अपनी वाइफ को और इस मैसेज को करने वाले रंजीत शर्मा जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि वो रात भी क्या रात होगी जिस रात उसकी बारात होगी, दिल बेचैन है अब ये सोचकर मेरी मोहब्बत अब किसी और के साथ होगी, पत्थर भी टूट गया पानी से जब किरदार हुआ अलग कहानी से, अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा मेरे दोस्त, वरना ये लड़का धो बैठेगा हाथ जवानी से। बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस लाइन को पहुंचाते हैं सुनो जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट सबीना खातू, और आगे थैंक्स सॉन्ग सुनाने के लिए। और इस मैसेज को करती है अनुजा कुमारी। आगे कई सारे मैसेज पहुंचा हुआ है जो हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं। आगे रोहित जी भी जुड़े हुए थे और थोड़े देर पहले मैसेज उनकी तरफ से पहुंचा हुआ है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं, हम तो बढ़िया हैं। और चलिए अंतिम गाने प्ले करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तो आप सब सुनते रहें रेडियो 96.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
5: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
5: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
7: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
6: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
7: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
6: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: मरद से प्यार कैले बड़े कोनो बुझलो
1: बुझ गए।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान है वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज,
5: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
4: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिया लो, पराली जलाए जले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
2: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
2: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
2: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लियो भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
5: उत्तर बिहार का गौरव,
6: सारण प्रमंडल की शान,
5: गोपालगंज की धड़कन
6: और अपने भाषा की पहचान,
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-350।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता:
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 90971602।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हरनी वाला कहे वाह।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
0: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
0: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
0: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
4: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
4: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
4: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद।

0: करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्रपत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9774-86164।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894 18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए।

0: पराली जलाए जले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा नहा खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे ए चाची जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
5: अरे ए बबू परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86 034 48 652 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले चलेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करे 85070-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटी, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल नवोदय नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर वार्ड नंबर 24 विष्णु शुगर मिल के पश्चिम गोपालगंज।
2: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
4: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
15: सुनो दिल से।
16: देखी जब हमनी के माता के गर्भ में रही ले जा, तो भगवान से यह प्रार्थना करेल आदमी कि हे भगवान, एह नरक कुंड से हमरा के बाहर करी, अब हम जब बाहर आए तेरा और नाम गुन गायब, और यहाँ आके हमनी के भुला जतनी जा एह माया में। यही पर कवि विश्वनाथ राजपुरी जी के ई रचना बा, देखी वहाँ क्या कहतनी।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: और

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
8: प्रस्तुत बा निर्गुण रउआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा, हम और बाबूजान भाई। देखी एके बाबूजान भाई सजौले वाले कितना बढ़िया आ, गलती के क्षमा करब। प्रस्तुत बा निर्गुण, सुनी संसार में का होता आ का करे के चाही। शेरबा
9: डाली डाली बगिया में

सजनी कहतरी साजन से आसो तू बलम जीना गवना करई हा आसो तू बलम जीना गवना करई हा होखे दसयान।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861464।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।
8: रात होई ता बिहान होई बेकरी, खैला से बेसी होई ता जियान होई बेकरी, आर खिलल बगिया जब जब

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: ठक ठक।
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
5: और 90-97-61-60-02।

0: हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड

0: एटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
2: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
2: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
2: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी भाई जानकारी देके।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, आप लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है
2: जी, बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: हम लोग भी ठीक है मैम, काम धंधा चल रहा है, इसी में टाइम निकाल कर थोड़ा सोचे कि आज दिन है तो कॉल कर लें।
2: जी जी, बिल्कुल बढ़िया सोचे। तो नाम बता दीजिए।
1: मैं संगम कुमार, ग्राम धनौती, पोस्ट कटिहार, थाना कटिहार, जिला गोपालगंज, बिहार से हूँ मैम। अभी तो मैं फिलहाल में महाराष्ट्र में हूँ, काम कर रहा हूँ, मुंबई हूँ। तो हम लोग क्या मोबाइल के माध्यम से रेडियो रिमझिम सुनता हूँ हम लोग।
2: अच्छा,
1: हम लोग कहीं भी रहते हैं तो एप्स है ना आप लोगों का जो, उसके माध्यम से हम लोग सारे कार्यक्रम का आनंद लेते रहते हैं, आपका काम भी करते रहते हैं हम लोग।
2: चलिए बढ़िया है। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मैम गुंजन सिंह का कोई भी गम का गाना भोजपुरी सुनवा दीजिए।
2: गुंजन सिंह का कोई भी गम का गाना भोजपुरी?
1: जी मैम। जी
2: जी, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना अभी।
1: जी मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।

0: नमस्कार सोनी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: एक बार और किए थे 5 मिनट पहले तो रिंग हुआ, उठाया नहीं यार।
1: ऐसा तो नहीं है, एक कॉल रिसीव किए थे लेकिन करते ही कट गया था।
0: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं सहारनपुर
1: जी। कैसे है धर्मेंद्र जी?
0: बढ़िया है।
1: क्या हो रहा था अभी?
0: ड्यूटी में
1: तो बता दीजिएगा ना, कौन सा सुनना है आपको?
0: कर्मा फिल्म में गाना सुनवा दीजिए, ए मोहब्बत
1: जी। और सुनवाना भी है?
0: रंजीत तिवारी है, पांडे जी है
1: जी,
0: शुभम है, और रेडियो इंजिन तो तक सुनेंगे सारे यार।
1: तो प्ले करेगा ना
0: जी?
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी चॉइस में कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देख रेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
14: बात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हाँ नमस्ते दीदी, हम माझा गढ़ मिश्रोलिया से बोलता नहीं सिंधु देवी।
16: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
15: दीदी
16: जी
15: बोलिया तो सुनाए।
16: सब बढ़िया, अपने को बताई कैसन बनी?
15: ठीक बनी सर।
16: आज गाना कौन सुने के बाद?
15: आज गाना सुने के बाद बहुत ढेर दिन पर हम फोन कर लेनी दीदी। गाना सुने के बाद जादूगर जादूगर जादू चला के
16: अच्छा
15: दुल्हन बनू मैं तेरी, वही गाना है।
16: जी जी गाना भी है।
15: सुनम सो हमनी के हमारे दियादिन बड़ी ननद बनी हम बनी पूरा हमारा फैमिली बनी सुनम
16: तो प्ले करें।
15: जी दीदी
16: बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं कॉल
15: नमस्ते
16: नमस्ते

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
1: नरेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
0: जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर।
1: हेलो
0: जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: नरेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
0: अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है दिनेश जी?
1: ठीक है जी, अपना सुनाइए।
0: हमारा बढ़िया है। कहाँ है, ड्यूटी में?
1: हाँ ड्यूटी में है। आवाज नहीं आ रहा था क्या?
0: आ रहा था, हवा का आवाज ज्यादा आ रहा था।
1: अच्छा, चलिए और सब सुनाइए।
0: सब बढ़िया है, तो बता दीजिए आज गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: अब गाना तो एक भोजपुरी गजल है, नीरज मिश्रा का है, जान अखिया मत चुराओ।
0: जी,
1: यही तो सुनना है
0: और सुनवाना भी है।
1: रद्दी भैया भाभी और जितने रिमझिम श्रोता है सारे सुनेंगे।
0: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चॉइस में कॉल किया।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87 8 94 18 7 44।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यह होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्कार दीदी।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार पे।
12: जी, क्या हाल चाल है?
13: बहुत बढ़िया दीदी, आप लोग का दुआ ठीक है, आप कैसे हैं?
12: तो क्या हो रहा था अभी?
13: साफी को कॉल लगा रहे थे।
12: तो गाना कौन सा सुनना है आज?
13: आज ताजमहल का गाना सुना दीजिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा।
12: जी, और गाना सुनवाना भी है
13: जी, हमारे दोस्त वलील अंसारी, पिपल अकेला मनोहर लाल गांधी, रजनी सिंह चौहान जी हरदोई की, राजेंद्र यादव भारतीय जी एम उत्तर प्रदेश के, नाहर मंटोला के जाहिद अली, शाहिद अली, साजिद अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली और कादिर अली को।
12: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
13: नमस्कार।
12: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से है?
1: मनीषा कुमारी तरिया सुंदर से।
0: जी, कैसी है मनीषा जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी है?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था?
1: कॉल लगा रही थी।
0: तो कॉल तो लग गया है, गाना कौन सा सुनना है आज आपको बता दीजिए।
1: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।
0: जी, और सुनवाना भी है गाना?
1: मैम नेहा कक्कर के आवाज में सुनाइएगा।
0: जी
1: जी मैम, आपको और अपने भैया भाभी को और अपने दोनों दीदी को और छोटे भाई को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को।
0: चलिए, तो प्ले करेगा ना आपकी?
1: जी मैम।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल के।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
1: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
0: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल। क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 2027 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
1: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
0: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
1: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 8002221969 या 9117081530।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
12: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
11: Hello, hello, hello, hello, hello.
12: Bhage bhage phirte hain.
13: Break ke
11: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हाँ नमस्ते।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिमझिम 90.4 FM में।
13: मैम हम छोटे गुड़िया बोल रहे हैं।
14: जी क्या हाल चल बा?
13: ठीक हुआ, आप बताएं।
14: हम तो बढ़िया बा, क्या होत रहा है अभी?
13: कुछ नहीं, सही बाबू के।
14: तो आज कौन गाना सुने के बा?
13: मेरी जिंदगी है तू, यही वाला सुना दीजिए।
14: और सुनाना भी है?
13: हाँ।
14: चलिए तो प्ले करे गाना।
13: हाँ ठीक है, करी।
14: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है लो माई चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अमन कुमार थावे से।
1: जी, कैसे हैं अमन जी?
0: ठीक है
1: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी घर पर बैठे फोन लगा रहे 11 बजे से, अभी लगा है। बताइए, आपको अभी बंद बता रहे, कभी बी बता रहे, कभी 11 से 12:30 में होता है 1 घंटा। गाना सुना दीजिए, करीना पांडे का कोई।
1: करीना पांडे का कोई भी गाना और सुनवाना भी है
0: आपको, जितने लोग सुन रहे हैं।
1: चलिए तो प्ले करेगा ना?
0: ठीक है
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किए।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो

0: सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: नमस्कार,
4: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जी मैं निजामुद्दीन बोल रहा हूँ बिहार से।
4: जी क्या हाल चाल है?
3: बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए सोनी जी।
4: हमारा भी बढ़िया है, क्या हो रहा था अभी?
3: ये हमारे तो भाई के शादी था, इसी में सऊदी अरब से आए हुए थे और फिर जाने वाले हैं, तो कोई अच्छा सा अपने फरमाइश का गाना सुना दीजिए। आज अपने फरमाइश का गाना सुनाइए, ठीक है?
4: जी, तो गाना तो सुना देंगे अपने पसंद से, हिंदी या भोजपुरी इतना तो बताइए।
3: हाँ, हिंदी में ही सुनाइएगा, पूरी नहीं, और पूरा ज्यादा पुराना भी है और ज्यादा नया भी नहीं। आप अपने पसंद से बहुत अच्छे सुनाते हैं, कोई नया बात नहीं है, हम तो बराबर आपका इंजिन प्रोग्राम सुनते रहते हैं, ठीक है? तो आप बजा दीजिएगा, ठीक है? और मैं अपने पूरे परिवार को सुनाना चाहता हूँ, इंजिन परिवार को, ठीक है? चलिए सोनी जी, फिर आपसे बात होगी। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सो मैं कॉल किया।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिटेलिंग में 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
0: मैं राजू बोल रहा हूँ, दादा नगर आवाडी श्रीवास्ता से।
1: जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
1: हम भी बढ़िया है। क्या हो रहा था?
0: बस ऐसे ही, मैं सोचा लगाता हूँ, लेकिन लगाया तो सुन नहीं पाया था गाना।
1: कोई बात नहीं, आज बता दीजिए आज की गाने की सुनवाई।
0: हाँ, तो मेरा तो भोजपुरी गाना सुनने का इंटरेस्ट रहता है। कौन सिंह का कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
1: कौन सिंह का कोई भी गाना जी। चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपके।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए जले के बा।
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसन का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87894 18744।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
10: ठक ठक।
11: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
13: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हाँ जी
2: जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
1: महेश शर्मा, कालीकम से।
2: जी जी, कैसे हैं महेश जी?
1: बढ़िया है, आप लोग अपना कहिए मैडम।
2: हम भी बढ़िया है, क्या हो रहा था?
1: आज छुट्टी है, बहुत गर्मी है इधर में, आप लोग उधर में तो पूरा गर्मी होगा मैडम।
2: जी जी, गर्मी तो इधर भी बहुत है।
1: जी
2: जी,
1: तो अभी लोग गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको। आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बताइए।
1: दिलवा ले जा रुमाल में।
2: दिलवा ले जा रुमाल में।
1: जी
2: जी, और सुनवाना भी है?
1: नहीं मैडम, कितने बजे?
2: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: कितने बजे सुनाएंगे मैडम?
2: 5 से 7 के बीच में कल में आएगा आपका।
1: आज नहीं?
2: नहीं आज नहीं।
1: ठीक है तो मैडम सुना दीजिए।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: हेलो फरमाइश रंजीन में
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: जी। मोहम्मद सलाल अंसारी मझौलिया भारत बिहार से
1: जी।
0: जी मेरा अपना हुआ और अपना बताया, पूरी टीम को बताया, कैसे हैं आप लोग?
1: हम लोग भी बढ़िया हैं, टीम भी बढ़िया है, आप बताइए।
0: आप लोग का दुआएं मेरे साथ है तो मैं अच्छा हूँ और अब तो हो रही है, मेरा फरमाइश को पूरा किया जाए
1: जी। जी
0: प्रेम प्रोग्राम का गाना है ये, प्यार था या और था, ये प्यार था या कुछ और था, ना मुझे पता ना मुझे पता, ये निगाहों का ये खुशूर था। इसी गाना को प्ले
1: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
0: डेडिकेट पसंद करेंगे तो टाइम लगेगा, अभी मेरे उत्तर आ रहा, मेरे दो बेटे का शादी था
1: जी जी,
0: और दोनों बेटे का शादी की हूँ और थका हुआ हूँ, इसी में आपका प्रोग्राम ढूंढ रहा था
1: जी।
0: अभी मेरे सदा बंधु और चौदह बंधु लोग को और आप सबको मिलाते हुए मैं नमस्कार करता हूँ, मेरा फरमाइश पूरा किया जाए, धन्यवाद।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं चॉइस में कॉल किया।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
16: खैरियत है सर?
15: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए।
16: बढ़िया है ना, बढ़िया का काम है। सुबह 11 बजे से ट्रायल कर रहा।
15: जी जी,
16: लास्ट में आकर के लग गया।
15: चलिए फाइनली लग गया ना।
16: हाँ लग तो गया
15: जी।
16: हमको एक गाना सुना दीजिए।
15: जी बिल्कुल सुनाएंगे, गाना बता दीजिए नाम गाने का।
16: मैं तो छोड़ चला बाबुल का देश, जाके घर जाना।
15: अरे गाना सुनवाइएगा भी किसी को।
16: पहले तो आपको, आपको तो सुनाना नहीं चाहिए। क्योंकि लगता नहीं है।
15: अच्छा अच्छा।
16: पहले आपको और उसके बाद जिम के जितना देश विदेश सुनने वाले हैं सबको।
15: ओके चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
16: हाँ कर दीजिए। कब सुनेंगे ये?
15: ये कल शाम को 5 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है।
16: ठीक है ठीक
15: ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
10: Now pick it up, now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: सोनी मैम
1: जी, सोनी मैम बात कर रहे हैं, आप बताइए अपना नाम और कहाँ से?
2: संजय कुमार
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं संजय जी?
2: भीखमपुर
1: जी। कैसे हैं?
2: ठीक है।
1: तो क्या हो रहा था?
2: कुछ नहीं, काम हो रहा है घर पे
1: जी। तो बता दीजिए, सब बढ़िया है, बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है नाम फिल्म का, बॉलीवुड का फिल्म है और संजय दत्त का है, कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा
1: जी। और सुनवाना भी है?
2: हाँ जी, सबसे पहले आपको भी हमारे गोपालगंज के निवासी है सबको।
1: ओके, चलिए तो प्ले करें।
2: ठीक है जी, थैंक यू,
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो मैं कॉल की।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रेंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
4: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
8: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
7: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
9: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
7: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554 94 53
7: और 90 97 61 60 02।
10: बहुत क्यूट है यार।
11: अरे वो क्यूट है, तेरा भाई भी तो क्यूट है। डोंट वरी ब्रदर, राम जी की लारी, लेट्स गो।

0: Hey guys, thank you so much for watching our song.
1: Do like, comment and share.
2: And do subscribe to our channel, United White Flag.
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
11: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।

0: फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल में आज सुनिए नाटिका तेरा तुझको अर्पण।
1: क्यों करती धरती कुछ हो नहीं, पर चिल्लाते इतना हो कि मोहल्ले भर को खबर हो जाती है। अरे इतना सा काम था, तुमसे नहीं हो सकता है क्या?
2: अरे मैं ही तो कर रहा हूँ। वो धुला हुआ मेज पोछ ले आओ जिस पर जानकी ने बेल बूटे बनाए हैं। इतने में ये सोफे ढंग से जमा देता हूँ, जल्दी ले आना।
1: लो ये रहा मेजपोश। और सुनो, अब मुझे तंग मत करना, मैं रसोई घर में हूँ। अरे उन लोगों के लिए नाश्ता वाश्ता भी तो तैयार करना है।
2: जाओ जाओ जाओ, लेकिन जानकी से कह देना कि वो तैयार हो जाए। कहीं नाश्ता लेकर तुम मत चली आना, वरना वरना मेरा क्या होगा।
1: तो भी अब बुढ़ापे में मजाक सूझ रहा है। अरे मुझे तो तुम्हारे पल्ले ही बनी रहना है।
2: सचमुच
1: सचमुच आग लगी इस जमाने को, जाने किसने ये रीत चला दी। अरे अब तो लड़की बेपर्दा होकर सबके सामने चली जाती है। और एक हो हमारा जमाना था जब नाई या पुरोहित अपनी मर्जी से रिश्ते तय कराते थे और सबको उनकी बदमानी पड़ती थी।
2: अरे तभी तो मैं भुगत रहा हूँ।
1: क्या कहा तुमने?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि मेरा काम निपट चुका है, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो।
1: अरे वही तो कर रही हूँ बाबा।
3: बाबू राम प्रसाद जी। ओ बाबू राम प्रसाद जी
2: आ गए। अरे ओ जानकी की माँ।
4: हाँ।
2: मेहमान आ गए हैं, जल्दी तैयारी करो, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। आइए आइए, मकान तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
3: नहीं नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं हुई। आपका घर आदित्य ने देख ही रखा था।
2: आइए आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। आओ बेटा आदित्य
5: जी,
2: यहाँ बैठो।
5: जी धन्यवाद।
3: और सुनाइए बाबू राम प्रसाद जी।
5: जी
3: अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैंने सुना था कुछ।
2: बाबू चिरंजी लाल जी, स्वास्थ्य की भी आपने खूब कही। अब कोई ज्यादा दिन जिंदगी की नाव थोड़े ही चल पाएगी। बस जानकी की चिंता है, इसके हाथ पीले कर दूं और गंगा ना।
3: तो है ही, वो तो है ही।
2: आप सुनाइए, घर तो सब कुशल है ना? बहन जी नहीं आई?
3: अजी वो तो जिद कर रही थी, मैंने ही मना कर दिया। भला बताइए तो शादी ब्याह के मामलों में औरतों का क्या काम?
2: वो तो है ही, वो तो है ही। और कहो बेटा आदित्य
5: जी,
2: तुम्हारी नौकरी के क्या हाल है?
5: जी बाबू जी ठीक है, प्रमोशन लिस्ट में नाम आ गया है, आपके आशीर्वाद से हेड कैशियर हो जाऊंगा।
2: वाह बेटा, जीते रहो, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। वाह
3: अब क्या बताएं बाबू राम प्रसाद जी।
2: जी
3: पूरे 10,000 खर्च हुए हैं।
2: 10,000?
3: जी हाँ, तब कहीं जाकर इस लायक बन पाया है।
2: वो तो है ही है। आज कल के जमाने में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, लेकिन कुछ भी कहिए, पहले चाहे पैसा खर्च हो जाए, बाद में तो आराम ही आराम रहता है।
3: अजी कहाँ कोई आराम नहीं मिलता, ये सारी तनख्वाह अपने आप पर ही खर्च।
5: लेकिन बाबू जी मैं तो सब
3: चुप रहे। हाँ तो बाबू राम प्रसाद जी,
2: अजी
3: हम जरा जल्दी में हैं।
2: जी हाँ जी हाँ, मैं अभी जानकी को बुलाकर।
3: अरे बहू को तो फिर देखते ही रहेंगे, पहले कुछ जरूरी बातें निपटाई जाए तो कैसा रहे।
2: जी जी हाँ, वो भी निपट जाए तो अच्छा ही है।
3: तो सुनिए बाबू राम प्रसाद जी,
2: जी
3: जहाँ तक दहेज का प्रश्न है वो हम नहीं लेंगे।
2: क्या क्या कहा आपने, आप दहेज नहीं लेंगे? यानी कि आप दहेज

0: जी हाँ, दहेज मांग कर हमको अपने बेटे की नीलामी थोड़े ही करना है।
1: जी हाँ,
0: जमाना बदल चुका है।
1: जी हाँ,
0: अपने को जमाने के साथ चलना है।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: दो चार दिन हुए बाबू जीवन लाल मिले थे। आप तो उन्हें नहीं जानते होंगे, बहुत बड़े आदमी हैं। कहने लगे बाबू साहब किसी को भी नहीं मालूम होने दिया जाएगा, 25,000 का नकद दहेज दूंगा।
1: क्या?
0: मेरी बच्ची को अपनी बहू बना लीजिए। लेकिन
2: बाबूजी, जीवन लाल जी वही ना जो कल सुबह आपसे बच्चों की फीस के लिए 20 रुपए उधार मांगने आए थे।
0: अरे तो तू चुप नहीं रहेगा?
2: सॉरी बाबूजी, अब नहीं बोलूंगा।
0: बाबू राम प्रसाद जी,
1: जी
0: आदित्य मजाक करने का बहुत आदी है। हाँ तो बाबू राम प्रसाद जी, दहेज की मांग हमारी ओर से नहीं है, परंतु दो एक बातें हमारी माननी होंगी।
1: बाबू चिरंजी लाल जी, जब आप इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हैं, तो क्या मैं आपकी दो एक बात भी नहीं मानूंगा? फरमाइए।
0: तो सुनिए बाबू राम प्रसाद जी।
1: जी,
0: हमको भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है।
1: होना ही चाहिए।
0: आजकल तो महिलाएं जेवर आदि बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और वो जेवर नहीं पहने ये मुझे पसंद नहीं है। बहू सोने चांदी के जितने अधिक से अधिक जेवर पहनेगी उतना ही अच्छा होगा। हम तो खैर बनवाएंगे ही। दूसरी बात ये कि शादी होने के तुरंत बाद में इन दोनों को अलग कर दूंगा।
1: क्या मतलब?
0: ये जाने और इनका काम जाने, इसलिए इनकी गृहस्थी का सामान भी आपको ही देना होगा। वैसे कुछ जरूरी सामान जैसे झाड़ू सूप चक्की आदि तो हम दे ही देंगे, आपको फ्रिज पंखा स्कूटर देना होगा।
2: बाबूजी, तारीख देखने के लिए कैलेंडर भी आप ही देंगे या?
0: तू चुप रहे। हाँ तो बाबू राम प्रसाद जी फिर।
1: लेकिन आदित्य बाबू ने तो।
0: अजी ये कल का छोकरा क्या क्या है?
2: अजी राम प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, घर के सब लोगों से विचार विमर्श कर लीजिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। क्यों बाबूजी?
0: हाँ हाँ बाबू राम प्रसाद जी, आदित्य ठीक कह रहा है,
1: मगर
0: आप सोच लीजिए, लेकिन कल तक जरूर खबर कर दें। वो बाबू जीवन लाल बहुत पीछे बढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा संकोची जी हूँ,
1: मगर
0: अच्छा आप इजाजत दीजिए।
1: अरे आप तो जाने लगे, नाश्ता वगैरह तो लीजिए। अजी सुनती हो?
0: अजी नाश्ते की भी आपने खूब कही, नाश्ता तो हम आप बहू से घर ही बनवा कर खाएंगे। चलो बेटा आदित्य।
1: अरे लेकिन बाबू चिरंजी लाल जी, थोड़ा मुंह तो मीठा करते जाइए। अजी सुनती हो? अजी सुनती हो?
3: सुन रही हूँ जी। सुनो, आदित्य बाबू तो कहते थे पिताजी जो कहे मान लेना, पर तुम ही सोचो इतनी चीजों के लिए कोई भला कैसे मान ले।
1: हाँ जानकी की माँ, यही मैं सोच रहा हूँ। ये लिफाफा,
3: लिफाफा
1: सोफे पर कैसे पड़ा है? कहीं वो लोग तो नहीं भूल गए? लो, इस पर तो मेरा नाम लिखा है।
3: तुम्हारा नाम? अरे खोल कर तो देखो क्या लिखा है, देखो तो सही।
1: आदित्य बाबू का है, लिखा है पिताजी ने जिन जिन चीजों की मांग की है उन्हें मंजूर कर सूचना पहुंचा दें, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, मैं कल आऊंगा।
3: कल आऊंगा? सुनो, मेरी समझ में तो ये गोरख धंधा नहीं आता बाबा।
1: जानकी की माँ, जब आदित्य बाबू कह रहे हैं तो मैं खबर भिजवा देता हूँ, जैसा होगा देखा जाएगा।
3: जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन सुनो मैं कहती हूँ जो कुछ करो सोच समझ कर करना, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ जाएगा। लड़की का सवाल है ना?
1: देखा जाएगा जानकी की माँ, भगवान मालिक है।

0: वाह भाई वाह, मजा आ गया। बाबू राम प्रसाद जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो मांग रखी जाएगी वो पूरी कर देंगे। अजी सुनती हो? अजी सुनती हो? मैंने कहा सुनती हो?
1: अरे जल्दी कह दो जो कुछ कहना है। बहू को देखने पड़ोसी आई हुई है, मुझे समय नहीं है।
2: बाबूजी, कोई थानेदार मिलबे को आए हैं।
0: हैं? थानेदार? अरे अजित का दोस्त वोस्त होगा?
2: नहीं बाबूजी नहीं, वो तो आपसे ही मिलना चाहते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बुला लो। आदित्य की माँ, ये थानेदार जाने क्यों आया है? मेरा तो दिल घबरा रहा है, जल्दी आदित्य को भेजो।
1: जाती हूँ, अभी भेज रही हूँ, तुम घबराना नहीं।
3: आप ही मिस्टर चिरंजी लाल हैं?
0: हाँ जी, मेरा ही नाम चिरंजी लाल है। आइए आइए बैठिए। कैसे तकलीफ की? अरे ओ बुधवा, कहाँ मर गया? थानेदार साहब के लिए कुछ मिठाई विठाई ला।
2: लावत है मालिक।
3: रहने दीजिए, मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ। ये बताइए आदित्य कौन है?
0: जी मेरे बच्चे का नाम है साहेब, बड़ा ही होनहार बच्चा है।
3: ये शादी मिस्टर आदित्य की हुई है?
0: हाँ जी उसी की हुई है।
3: देखिए मिस्टर चिरंजी लाल, हमको शिकायत मिली है कि आपने इस शादी में दहेज की मांग की थी तथा बहुत सा दहेज लड़की वालों से वसूल किया है।
0: नहीं नहीं, ये तो सच नहीं।
4: हेलो सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, आप?
4: जी मैं आदित्य शर्मा।
3: ओ आई सी। देखिए मिस्टर आदित्य, हमको शिकायत मिली है कि आपने लड़की वालों से बहुत सा दहेज वसूल किया है, जबकि दहेज लेना और देना दोनों ही सामाजिक अपराध हैं।
4: मुझे दुख है कि आपको तकलीफ दी गई। ये जितना सामान आप देख रहे हैं ये दहेज में प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि हमारा ही है।
3: इसका आपके पास क्या सबूत है?
4: ये देखिए, बैंक लोन के कागजात, मेरी पासबुक।
0: तो आदित्य, क्या ये तूने सब बैंक से लोन लेकर खरीदे थे? आदित्य?
4: हाँ जी हाँ बाबूजी।
0: हे राम, ये क्या हो गया? ये क्या धोखा हो गया? हे राम मुझे संभालो।
3: हाँ तो मिस्टर आदित्य,
4: थानेदार के बच्चे, अब एक्टिंग की जरूरत नहीं। वैसे तूने फर्स्ट क्लास एक्टिंग की है, इनाम जरूर मिलेगा।
3: इनाम? इनाम में भाभी के हाथ की चाय के बारे में क्या ख्याल है?
4: मैं पुलिस वालों से इतनी अधिक दोस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझता।
3: ठीक है तो फिर मैं बाबूजी को।
4: अरे अरे अरे अरे, दुष्ट, उसी के हाथ की चाय पी लेना भैया।
3: ये हुई ना बात।
5: हवा महल में आज आपने सुनी तेरा तुझको अर्पण।
6: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया ही आ, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
15: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
14: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
15: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
14: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-3500।
16: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
17: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में दो सीमेंट इकाइयां लगाए जाने के स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB की 67वीं बैठक में सीमेंट की दो बड़ी फैक्ट्री स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने अधिकारियों को भूमि परिमार्जन और सर्वे का काम समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भूमि विवाद एक गंभीर समस्या है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सर्वे कार्य में अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो हमारे सेवाएं चल रही है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा किया और उन्होंने राजस्व विभाग के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है सभी कामों का निपटारा हो, और इसके लिए उन्होंने हमें विशेष करके बहुत सारे पदाधिकारी भी इसमें देने का काम किया है कि स्पेशल ड्राइव चलाया जाए और सर्वे के काम में तेजी लाया जाए, जिससे जो जमीन विवाद को लेकर के अपराध के मामले आते हैं उस पर रोक लगाया जा सके।
0: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों, उद्यमियों और युवाओं से कृषि अवसंरचना कोष AIF से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। पटना में विभागीय बैठक के दौरान केंद्र की इस योजना की समीक्षा की गई। श्री सिन्हा ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्यों में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में इस योजना के तहत नवंबर 2025 तक 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें सबसे अधिक 834 भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम परियोजनाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। शेखपुरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे मन से कार्य कर रही है।
2: बिहार के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने जो लकीर खींचा है उस लकीर को बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के हाथों में कमान दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है उस लकीर को ये बड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा है। निश्चित रूप से बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, जो आशा है, उसको वर्तमान सरकार जरूर पूरा करे।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर युद्ध जनित स्थितियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि दुनिया भर में घटनाक्रम के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बातें छोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए।
3: यह जो विषय है जिसके कारण तेल का दाम बढ़ रहा है, यह विषय तो पूरी दुनिया से संबंधित है। इसमें भारत का बहुत कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए ऐसे समय में लोगों को चाहिए, विपक्ष के भी जो भी नेता हैं, कि एक जिम्मेवार नागरिक की तरह परिचय दें, अनर्गल बात ना करें।
0: प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में 18 मई से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि जिले के किशनगंज त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे में कार्यरत जंतु विज्ञान विषय की प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह 9वीं गिरफ्तारी है। आरोपी प्राध्यापक ने परीक्षा में संभावित प्रश्नों को विशेष कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को लिखवाया था। इनमें से अधिकांश सवाल 3 मई को आयोजित परीक्षा में पूछे गए थे। इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर आज कई आपत्तिजनक दस्तावेज लैपटॉप मोबाइल फोन और बैंक पासबुक जब्त किए हैं। जब्त सामग्रियों की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने आज जमुई के झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के पटना और जमुई स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 2 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान नकद समेत निवेश के कई कागजात बरामद किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। श्री द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को सामने रखते हुए ये बात कही है।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
2: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज देश और प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से सरकार के डेंगू नियंत्रण प्रयासों में बढ़ चढ़ कर सहयोग की अपील भी की है। इधर जहानाबाद, शेखपुरा और मुंगेर समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में आज जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मी और विभिन्न संस्थाओं के स्वयंसेवी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव में आज जीविका भवन का उद्घाटन किया। ये भवन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में बनाया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बनने और वातावरण में नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में प्री मानसून की स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रदेश में आज वट सावित्री पूजा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना के लिए जुटी रहीं। योजना और विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में कानून और सुशासन का राज है। श्री कुशवाहा रोहतास के शिवसागर में बुद्ध पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत प्रसुंडा बासा बहियार में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। किशनगंज जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गवनडंगा थाना में पदस्थापित दारोगा को निलंबित कर दिया है। साथ ही एक जवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दोनों पर एक महिला की हत्या मामले की जांच के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है। कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शेखपुरा पुलिस ने 7 मई को कसार थाना क्षेत्र के वर्षा गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि फरार अन्य 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा के राजगीर में कल से मलमास मेले का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि कल ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के ऋषि कुंड में एक माह तक चलने वाला मलमास मेला आज से शुरू हो गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर कल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। औरंगाबाद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा ने जल कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया है। सांसद अभय कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय की योजना भवन में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनिया टोला से पुलिस ने एक महिला को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की घोषणा, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में जल्द शुरू होगी सीमेंट फैक्ट्री। राज्य में विशेष अभियान चलाकर भूमि सर्वे के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, विभागीय बैठक में लिया गया फैसला। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पुणे में पदस्थापित प्राध्यापक मनीषा गुरुनाथ मंधारे को किया गिरफ्तार। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
13: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
13: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
15: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
16: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
17: हवा महल।

हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको रोमेश जोशी की लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं बिना बांह का स्वेटर। निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर।

0: अरे लगता तो अस्पताल जैसा ही है। बाहर बोर्ड पे भी तो लिखा था डॉक्टर विपिन बिहारी।
1: अरे इस अस्पताल में कोई है?
2: कहिए क्या बात है?
0: डॉक्टर विपिन बिहारी कहाँ है?
2: अंदर है, आप बैठिए।
0: देर लगेगी क्या?
2: नहीं नहीं, आपका ही नंबर है।
0: थैंक यू थैंक यू।
2: एक मिनट, आपका ये स्वेटर का डिजाइन देखना है प्लीज।
0: देख लीजिए, आप भी देख लीजिए।
2: बहुत अच्छा डिजाइन है, तीन फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे। जाइए जाइए, डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं।
0: अरे आपने तो रोका था।
2: हाँ मगर वापस लौटते हुए मुझसे मिलकर जाइए।
3: मरम पट्टी आप ही करेंगी क्या?
2: नहीं वो तो उधर होगी, मगर
3: मगर
2: ये डिजाइन एक बार मैं फिर देखूंगी।
0: जी
4: यस
0: डॉक्टर साहब, आप तू ही है?
4: हाँ मैं ही हूँ।
0: अरे
4: कमल है ना? देखा, भूला नहीं हूँ मैं तुम्हें। हाँ
0: इतने बरस बाद।
4: हाँ 10 साल हो गए, कॉलेज के बाद आज मिला है। अच्छा कैसा है तू?
0: अरे ठीक।
4: अरे अरे अरे अरे
0: नहीं,
4: क्या हुआ क्या हुआ? चिंता मत कर, अभी ठीक हो जाएगा।
0: देख दे, ठीक कर, जल्दी ठीक कर, फटा जा रहा है।
4: हाँ ये ले मेरे दोस्त, ये स्प्रे लगा।
0: हाँ यार कुछ आराम आया।
4: हाँ पर यार ये चोट लगी कैसे?
0: अरे बस ऐसे ही यार, ना पूछे तो अच्छा है।
4: भाभी ने बेलन मारा है क्या?
0: अरे यार तेरे जैसी किस्मत मेरी नहीं है भाई।
4: क्यों क्यों क्यों, ऐसी क्या बात है?
0: शादी नहीं की तो तेरी भाभी के होने का सवाल ही नहीं।
4: अरे वाह, अरे वाह, बड़ा खुशकिस्मत है यार तू तो।
0: हाँ कुछ भी कह ले,
4: लेकिन ये फिर चोट कैसे लगी?
0: ये तो कॉलेज के दिनों की चोट है दोस्त।
4: मजाक कर रहा है यार तू।
0: नहीं विपिन, मजाक नहीं, पुरानी चोट है जो आज उभरी।
4: सच सच बता क्या हुआ?
0: अच्छा सुन, तुझे याद है कॉलेज में मेरे पास कैसे बेहतरीन स्वेटर हुआ करते थे बिना भाग के?
4: हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अरे तेरे स्वेटर देखकर कई बार बड़ी जलन होती थी मुझे।
0: मेरी बहनें और भाभियां हर साल बनाती थी मेरे लिए।
4: ये भी पता है, आगे बोल, उसका सिर की चोट से क्या संबंध है?
0: वही तो बता रहा हूँ यार, याद है अपनी क्लास में एक सोनल थी।
4: सोनल? हाँ सुना है, यहीं कहीं आसपास ही रहती है। फिर
0: उस दिन बहुत अच्छा बिना भाग का स्वेटर पहना था मैंने। हाँ तो मैं क्लास की ओर जा रहा था।
4: अच्छा
0: तभी मैंने सुना।
5: सुनिए कमल, सुनो तो सही।
0: आपने मुझे पुकारा?
5: यहाँ आसपास कोई और दिख रहा है क्या?
0: क्या है?
5: अरे पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो?
0: घबरा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, तो मैं कहाँ घबरा रहा हूँ।
5: अच्छा नहीं घबरा रहे तो ये इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे?
0: पसीने? वो स्टूपिड नहीं, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। बोलो बोलो क्या है?
5: मुझे तुम्हारा ये स्वेटर देखना है।
0: ये?
5: हाँ यही।
0: उतार दूँ क्या?
5: नहीं नहीं ऐसे ही देख लूंगी। अच्छा जरा उलट कर देखूं।
0: किसे? मुझे?
5: तुम्हें नहीं, स्वेटर को। अंदर से देखना है। ऐसे। क्या हो रहा है?
0: गुलगुली चल रही भाई।
5: ओफो। अच्छा ठीक है आराम से आराम से
0: आराम से आराम से देख लो।
5: कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। ये इधर से गया और
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये हनीकॉम्ब की डिजाइन में थोड़ी सी फेर बदल कर दी है।
6: लग तो रहा है, पर कैसे की है फिर बदल?
0: जरा सी बात है, नीचे की लाइन से हर तीसरे फंदे को उल्टा करके उठा लो।
6: अरे हाँ, ओ समझ में आ गया।
0: और हनीकॉम डिजाइन में ऐसा नहीं होता, उसमें फंदा सीधा उठाया जाता है।
6: थैंक यू कमल।
0: वेलकम वेलकम। आप चलें?
6: कहाँ?
0: वो बाबा क्लास में, क्लास में।
6: आओ। ओहो, आज तो लेट हो गए, तुम भी ना स्वेटर दिखाने लगे।
0: मैं तो विपिन, ये थी मेरी और सोनल की पहली मुलाकात, पहली बातचीत।
4: किस्मत वाले हो यार, किसी लड़के से बात ही नहीं करती थी।
0: मुझसे तो खूब बातें की उसने,
4: पर उसका तेरे सर की चोट से क्या संबंध?
0: अरे उसी से तो है संबंध, वरना इतना दर्द नहीं होता।
4: अच्छा, अब दर्द कुछ कम हुआ ना?
0: हाँ, काफी कुछ कम हुआ। फिर दूसरे दिन मैं दूसरा स्वेटर पहन के गया बिना बाह का।
4: और उसने तुझे फिर से रोका?
0: हाँ।
6: हाय कमल।
0: हेलो, आई मीन हाय।
6: जरा नजदीक आओ।
0: क्या है?
6: और करीब आओ ना।
0: बोलो।
6: स्वेटर देखना है। बहुत सुंदर है।
0: तुमसे ज्यादा तो नहीं।
6: क्या कहा?
0: हाँ, वो मैंने कहा कि इस डिजाइन में बस उल्टे फंदों का कमाल है ना?
6: दो फंदे सीधे,
0: फिर दो फंदे उल्टे,
6: फिर तीसरे फंदे को
0: घुमाकर उठा लिया,
6: फिर नीचे की लाइन में गिराए गए फंदे को
0: उठाकर एक और फंदा बढ़ा लिया,
6: और ये जाली बन गई।
0: कैसा जाल बनाते हैं ये उठते गिरते फंदे भी,
6: हैरान कर देते हैं, है ना?
0: चलो कॉफी पीते हैं।
6: क्या?
0: चलो आई मीन कैंटीन में कॉफी पियेंगे।
6: कॉफी तो कैंटीन में ही पी जाती है ना। चलो चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर।
0: क्या?
6: कॉफी के पैसे मैं दूंगी हम। चलो।
0: उस दिन हम दोनों ने कैंटीन में 1.5 घंटे बैठकर बातें की।
4: अच्छा, 1.5 घंटे तक क्या बातें की?
0: यही कि मेरे पास कितने स्वेटर हैं बिना बांह के,
4: और
0: कौन सा स्वेटर किसने बनाया है,
4: और क्या क्या बातें हुई, बताओ ना।
0: मन में तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन वो सिर्फ स्वेटर की बातें करती रही।
4: तेरे की, पर फिर भी इसमें सर की चोट कहां से आ गई?
0: वही तो बता रहा हूं यार, पर तू मुझे बोलने ही नहीं दे रहा।
4: मैं नहीं बोलने दे रहा। ठीक है, अब तू ही बोल, बता कैसे लगी चोट।
0: तीसरे दिन मैं तीसरा स्वेटर पहन के गया बिना बा का, उसने फिर रोका।
4: अच्छा, फिर
0: चौथे दिन मैं चौथा स्वेटर पहन कर गया बिना बा का, उसने फिर रोका।
4: अबे यार, तेरे पास कुल कितने स्वेटर थे बिना बाह के?
0: 8।
4: तो ठीक है, मान लिया 8 दिन में तूने सोनल को 8 स्वेटर दिखा दिए बिना बाह के, फिर?
0: मेरे पास बस 8 ही स्वेटर थे
4: बिना बाह के, गनीमत है 8 ही थे। अरे फिर ये चोट?
0: अरे यार, वही तो बता रहा हूं, तू मुझे बोलने ही नहीं देता।
4: अब क्या कहूं तुझसे। अच्छा बोल बोल बोल बोल।
0: उसके बाद रोज हम एक दूसरे को देखते, पर कोई बात नहीं होती।
4: क्यों?
0: मेरे पास 9वां स्वेटर नहीं था ना बिना बा का।
4: फिर
0: गर्मी आ गई,
4: फिर
0: एग्जाम आ गए, और फिर छुट्टियां।
7: डॉक्टर।
4: क्या हुआ शीला, क्या बात है?
7: आपको देर लगेगी क्या, बाहर कुछ मरीज?
4: हाँ, कुछ देर लग जाएगी।
7: तो फिर उन मरीजों को
4: ऐसा करो, डॉक्टर वर्मा के पास भेज दो।
7: ठीक है।
8: नमस्ते जी।
7: नमस्ते।
8: स्वेटर की डिजाइन समझ में आ गई आपको?
7: नहीं ना, आप थोड़ी देर के लिए इसे उतार कर मुझे दे दीजिए ना।
4: हाँ कमल, मिस शीला को भी नई नई डिजाइन के स्वेटर बनाने का बड़ा शौक है।
8: अच्छा अच्छा, मैं अभी उतार देता हूँ। ये लो।
7: थैंक यू, मैं बाहर रिसेप्शन पर हूँ, आप जाते समय ले लीजिएगा प्लीज।
8: नो प्रॉब्लम।
4: अमित चली गई, अब उधर मत देख।
8: अच्छी है मिस शीला,
9: शादी नहीं हुई ना?
4: शादी तो नहीं हुई, पर तू अभी जल्दी से बता दे ये चोट कैसे लगी।
9: हाँ बताता हूँ, वो सोनालाज फिर मिल गई थी।
4: हैं? कहाँ?
9: मैं खड़ा था टैक्सी के इंतजार में।
4: अच्छा, अब फिर?
9: एकाएक देखा सामने से सोनल चली आ रही है।
4: पैदल?
9: हाँ, दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की।
5: हाँ तो किस तरह गुजर गए पूरे 10 साल?
9: कट गए बिजनेस जमाते जमाते।
5: स्वेटर तो तुमने आज भी
9: अच्छा डिजाइन है ना?
5: देखूं जरा?
9: जरूर देखो, पलट कर भी देख लो।
5: क्यों, अब गुदगुदी नहीं होती क्या?
9: सुनो सोनल, इस तरह तुम उलट पुलट कर स्वेटर देखती हो।
5: हाँ तो?
9: कभी सोचा है इस स्वेटर के नीचे एक धड़कता हुआ दिल है?
5: सोचा है, पता है मुझे।
9: इतने करीब आकर स्वेटर के डिजाइन देखती हो और?
5: तो क्या हुआ कमल?
9: कभी धड़कता हुआ दिल कुछ कर बैठा तो?
5: कोई डर नहीं, कुछ नहीं करेगा।
9: क्या कहा?
5: हाँ कमल, जब कुछ होना था तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा?
9: क्या?
4: लेकिन कमल, अब भी तूने बताया नहीं ये ये ये चोट कैसे लगी?
9: वो ऐसे लगी यार कि जैसे ही सोनल गई मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया। बस अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने वहां पास ही जो बिजली का खंबा था
4: उसे अपना सर फोड़ लिया।
9: और क्या भी क्या जा सकता था मेरे यार, जिंदगी भर का सबक मिल गया मुझे। अच्छा विपिन, अब चलता हूँ।
4: एक दो दिन में आ जाना, मैं देखकर फिर दवा दे दूंगा।
9: हाँ हाँ, अब तो आता ही रहूंगा दोस्त।
4: और वो अपना स्वेटर ले जाना मत भूलना, बिना बाह वाला।
10: मिस शीला।
9: मैंने कहा मिस शीला।
7: जी। ओह, लीजिए आपका स्वेटर।
9: देख लिया डिजाइन?
7: हाँ देख भी लिया और समझ भी लिया, पर
9: आप चाहे तो और देख ले, मैं रुक जाता हूँ।
7: नहीं नहीं, वो मुझे लंच पर जाना है।
9: अगर मैं कहूँ आप लंच मेरे साथ ले तो?
7: आपके साथ? मगर वो?
9: अरे उस डॉक्टर विपिन बिहारी की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा।
7: चलिए
9: चलिए।
7: मगर आपको ऐसा क्यों लगा?
9: कैसा?
7: कि मैं आपके लंच का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी?
9: वो ऐसे कि हम दोनों की रुचियां एक जैसी हैं।
7: और?
9: आज सुबह मुझे एक सबक मिला है।
7: कौन सा?
9: वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बस इतना समझ लो शीला, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहूंगा।
7: ऐसा क्या?
9: तो चले?
7: चलते हैं, पहले अपना स्वेटर तो पहन लो, बिना वहां वाला।
9: जरूर।
11: बिना बाह का स्वेटर।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
13: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
14: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
13: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
14: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
13: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
14: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
13: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
15: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
16: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
15: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
15: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
17: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
17: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
17: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
18: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
19: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
18: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
19: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
18: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
19: जहां हर निवाला कहे वाह। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
20: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
19: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
18: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
19: संपर्क 99-393-65-930।
21: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
22: कार में म्यूजिक बजा, नाचूंगी कार में म्यूजिक बजा।

0: चाहते हो मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: ठक ठक।
0: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: तू जो है
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: Yeah.

0: मेरे दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
5: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
4: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
5: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565965।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो,
13: तो क्या हुआ?
12: तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना?

0: Hey guys, this is Ramji Gulati. Thank you for showing so much of love to Tere Bin Kiwe Rawangi. Guys, we've just re-uploaded the song and we need all your support. Jitna pyar aapne pehle diya, please continue to do so. Like, comment, share and don't forget to subscribe our channel. For those who love me and my team, we'll subscribe here and we're going to promise you, we're going to give you a lot of songs more.
1: Itna pareshan kyun dikh rahi ho, Megha?
2: Aas paas har jagah chacha ji ka ilaaj kara liya. Ab lagta hai unhe Delhi lekar hi jana padega.
1: Are, apne Gopalganj mein Gorakhpur, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
5: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियो से संबंधित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात, PMSSY नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट के लिए नियमित आधार पर प्रोफेसर सह प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पद का नाम है प्रोफेसर सह प्राचार्य। वेतन स्तर होगा 13, 7वें CPC के अनुसार। रिक्ति है 1 अनारक्षित। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, विस्तार में विज्ञापन एवं जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। www.aimsrajkot.edu.in यहां पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष की अवधि तक उसे बढ़ाया जाएगा। इन पदों के नाम की जानकारी आप तक हम दे दें। PGT गणित में 1 पद है, काउंसिलर के लिए 1 पद है, नर्सिंग सहायक के लिए 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद, PEM PTI सह मेट्रन महिला 2 पद, सामान्य कर्मचारी 2 पद। संविदा की कुल अवधि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 11 महीने पूरे होने तक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा और संस्थागत आवश्यकता के आधार पर अनुबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 मई 2026 और इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड है वो है 22 और 23 मई 2026। आपको हम वेबसाइट की जानकारी दें ताकि आप वहां से आवेदन पत्र और इससे संबंधित सारे शर्तें पात्रता देख सकें। www.sainikschoolpunglava.nic.in से डाउनलोड कर सकें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड श्री विजयपुरम अनिटको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के 1 पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं ANIIDCO@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। समाचार सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टीजीटी गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। टीजीटी हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है, संविदात्मक। टीजीटी मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त है, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है, जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक, विद्यालय चिकित्सा अधिकारी, दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित, संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, 3 स्थान यहाँ रिक्त है, संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा, पीओ बॉक्स नंबर 20, सदर बाजार, जिला सतारा, महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक।
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
12: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में।
13: क्यों, क्या हुआ है?
12: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
13: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
12: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
13: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
14: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
15: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
14: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
15: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
14: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
15: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
15: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
15: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
16: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
17: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
16: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
17: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
16: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
17: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
18: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
16: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। एएसएमएल उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत एएसएमएल गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन ऑन डिफेंस।
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: ठक ठक
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
17: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
16: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
17: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
13: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
14: क्यों, क्या हुआ है?
13: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
14: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
13: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
15: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
18: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, संतोष यादव हत्याकांड में मीरगंज के थाना अध्यक्ष को किया गया निलंबित। बैकुंठपुर हत्याकांड में 4 आरोपी भेजे गए जेल। मीरगंज के पीपरा में हुई फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केमिकल से नोट बनाने वालों के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। और जिंदा महिला को मृत बताकर जमीन हड़पने वाले 14 लोगों पर केस दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव में हुई संतोष यादव की हत्याकांड को लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मीरगंज के थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को निलंबित कर दिया। यह मामला मूकबधिर संतोष यादव की गोली मारकर की गई हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में पता चला कि थाना अध्यक्ष ने लापरवाही की और इस कांड में 3 निर्दोष लोगों को हत्याकांड के आरोप में जेल भेज दिया, जबकि इस कांड के दोषी पुलिस को चकमा दे रहे थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में जैसे ही पुलिस अधीक्षक ने जांच करवाया और मामला सामने आया तो थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को ही लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया और जो 3 निर्दोष लोग इस मामले में जेल गए हैं उन्हें अब जेल से रिहा कराने के लिए पुलिस काम कर रही है। साथ ही इसने जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें अब पुलिस जेल भेज रही है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद और साजिश को लेकर संतोष यादव और उसके भाई राम किशोर यादव की पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद के कारण राम किशोर यादव अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहता था और पड़ोसियों के साथ चल रहे पुराने भूमि विवाद में उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई राम किशोर यादव ने ही बड़का जिगना गांव के रहने वाले अपने पुराने दोस्त राज किशोर को हत्या के लिए बुलाया। घटना वाली रात को करीब 1:30 बजे राज किशोर को घर लाया गया और राज किशोर ने ही संतोष यादव को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद राम किशोर करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा ताकि मौत से वह पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। इसके बाद डायल 112 को फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी गई ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए शूटर राज किशोर और मृतक के भाई राम किशोर यादव को अब गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया, जबकि जो 3 निर्दोष लोग पहले से नामजद आरोपी बनाते हुए जेल भेजे गए उन्हें अब पुलिस निर्दोष साबित कर इन्हें जेल से रिहा कराने के लिए काम कर रही है। और इसी मामले में मीरगंज के थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि 3 मई को मीरगंज के जिगना गांव में मुख बधिर संतोष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मदन कुमार, हरिनंदन यादव और हरिकेश यादव को नामजद आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जब तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच करवाई तो पूरा मामला ही बदल गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
19: दिनांक 3 मई को जिगना में मीरगंज थाने में संतोष कुमार थे, ये चूंकि मूक थे, बोलने में असमर्थ थे, तो इनकी गोली मारकर हत्या हुई थी 3 तारीख को रात में। इस मामले में जो मृतक थे उनके भाई राम किशोर यादव के द्वारा FIR कराया गया था और FIR में इनके द्वारा अपने जो पड़ोसी हैं मदन कुमार, हरिनंदन, हरिकेश, इन तीनों का नाम दिया गया था और बताया गया था कि भूमि विवाद के चक्कर में इनके भाई को मार दिया गया। उन तीनों से तत्काल थाना प्रभारी ने उन तीनों को पकड़ा था और उसको मीरगंज थाना से जेल भेज दिया गया था, लेकिन हम लोग उसका अनुसंधान कर रहे थे, SIT बनाई हुई थी, पहले ही प्राथमिक तौर पर संदेह लग रहा था, लेकिन वादी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, इन्हीं तीनों ने मारा हुआ है। इसके बाद इसमें SIT बनाई गई, इसमें SIT बनाई गई थी इंस्पेक्टर हरिंदर और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर बाजीगर के नेतृत्व में। इन लोगों ने इस कांड का अनुसंधान किया 3 तारीख से लेकर अभी तक लगातार, और इस कांड के अनुसंधान में ये बातें स्पष्ट हुई कि कैसे ये घटना हुई थी, क्योंकि जो वादी ने जिन लोगों पर आरोप लगाया था उन लोगों की स्थिति रात में वो अपने घर पे ही थे और उन लोगों की कोई संदिग्ध स्थिति, संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई थी। तो फिर जब तकनीकी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ हुई, तो वादी का जो मृतक का जो भाई है राम किशोर यादव, उसने ही सारी घटना कराई थी, ये पूरी जांच में और पूछताछ में स्पष्ट हुआ। उसने बताया कि उसकी जो उसका जो भाई था जो मरा संतोष कुमार, उसकी लड़ाई हुई थी और राम किशोर की पत्नी को उसने कुछ दिन पहले मारा पीटा था। वो मूक था और उसको एक तरीके से राम किशोर रास्ते से हटाना चाह रहा था और साथ ही साथ हटाने के क्रम में राम किशोर का मुख्य लक्ष्य था कि अपने जो 3 पड़ोसी हैं जिनसे जमीन विवाद चल रहा, इन तीनों को हत्या केस में फंसाया जाए, फिर उसकी जमीन पर कब्जा किया जाए। इसलिए उसने ये पूरी षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक पुराने दोस्त राजकिशोर से संपर्क किया। राजकिशोर जो है वो भी मीरगंज का ही रहने वाला था, बड़का जिगना का, और राजकिशोर ने इस घटना को राम किशोर यादव के साथ मिलकर अंजाम दिया। राजकिशोर ही अपने पास से हथियार लेकर के आया था, गोली लेकर के आया था और राम किशोर जा करके राजकिशोर को लेकर के आया मोटरसाइकिल पर। रात में 1:30 के आसपास ये राजकिशोर ने गोली चलाई, मृतक को गोली लगी और संतोष कुमार की तुरंत इलाज के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। पूछताछ में जब ये सारी बातें आई कि मृतक का भाई ही संदिग्ध है, तो तब पूछताछ हुई तो उसने ये भी बताया कि मरने के बाद उसने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया ताकि ये पूरी तरह मर जाएं और फिर पुलिस को 112 को उसने कॉल किया। तो इस घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा जिससे ये घटना की गई थी, जिंदा कारतूस है, वो बरामद कर लिया गया है। जो इस कांड का सूचक था भाई मृतक का राम किशोर यादव और जो शूटर था राजकिशोर सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। और जो 3 निर्दोष जिनसे जिनके साथ राम किशोर यादव का विवाह था, उन तीनों को जेल से मुक्त कराने के लिए न्यायालय को प्रतिवेदन दिया जा रहा है। इसमें सही अनुसंधान हुआ है और सही अनुसंधान अब जाकर हुआ है इसमें, तो इसके लिए इंस्पेक्टर हरिंदर को 10,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और साथ ही इसमें अनुसंधान में थानाध्यक्ष मीरगंज की लापरवाही सामने आई है, उनके द्वारा पूछताछ नहीं की गई। जैसे ही वादी ने नामजद अभियुक्त किए तो बस केवल नामजद करने के आधार पर उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया था। वरीय पदाधिकारियों को भी नहीं सूचित किया गया था, इसलिए थानाध्यक्ष मीरगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसी भी स्थिति में किसी भी कांड में कोई भी वादी अगर किसी नामजद अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तारी का दबाव बनाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुसंधान
18: पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया कि आपराधिक घटनाओं में बिना जांच किए किसी भी नामजद व्यक्ति को दबाव में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच में लापरवाही या गलत अनुसंधान करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की हिदायत दी गई। पुलिस की इस तरह की जांच से 3 निर्दोष जेल से अब रिहा होंगे और असली कातिल जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और एक व्यक्ति की भाला गोद कर हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच करने के बाद साक्ष्य एकत्रित कर अब इसमें आरोपियों को सजा दिलाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें पंकज कुमार पिता शिव प्रसाद, मुन्ना कुमार पिता कमलेश मुखिया और कन्हैया प्रसाद पिता कमलेश मुखिया, ये तीनों साकिन प्यारेपुर थाना बैकुंठपुर के निवासी हैं और चौथा अर्जुन कुमार पिता बलि प्रसाद साकिन आशा खैरा थाना बैकुंठपुर का रहने वाला है। अब इन चारों को हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के पीपरा खास तिवारी टोला में बांस बल्ला जनरल स्टोर पर दो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने तथा अवैध हथियार से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL टीम ने भी जांच की। बताया जा रहा है कि एक गोली का खोखा भी बरामद हुआ है जिसे जब्त किया गया है। जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक अमरीश कुमार यादव पिता जितेंद्र यादव और दूसरा अमित शाह, दोनों हरखौली पश्चिम टोला थाना मीरगंज के निवासी हैं। अब इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक केमिकल से नोट बनाकर ठगी करने वाले लोगों का जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर

0: और इस तरह का एक गिरोह जो है वो बैकुंठपुर थाना के सिंहासिनी गांव में आज एकत्रित हुआ। ये लोग कुछ काम करने वाले हैं, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद SDPO सिद्धवलिया राजेश जी के नेतृत्व में ये SIT बनाई गई थी। राजेश जी SDPO सिद्धवलिया, साथ ही SHO सिद्धवलिया, SHO मोहम्मदपुर, SHO बैकुंठपुर, इन लोगों ने रात में रेड की। रेड के पश्चात वहाँ से करीब 95 लाख रुपये के नोट मिले हैं, 500 की गिड्डियाँ हैं। इसमें अभी संदेह हम लोगों को भी हो सकता है, इसमें कुछ जाली नोट भी होंगे, तो इनकी भी जांच की जाएगी। और साथ में इसके साथ जो नोटों के बीच में जो सफ़ेद कागज़ पेपर लगाते थे, जिसको एक कन्वर्ट करके झांसा देकर व्यक्तियों को फंसाते थे, वो बरामद हुआ है भारी मात्रा में। 95 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जिस एसिड और बेसिक एजेंट्स का ये लोग उपयोग करते थे, केमिकल्स का, जिसके माध्यम से कलर कागज़ का कलर चेंज होता था ताकि लोग झांसे में आ जाएं, वो बरामद हुआ है। और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। कुल 8 लोग उस कमरे में मौजूद थे। उन सब से पूछताछ हो रही है। उन सब से पूछताछ के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये जो गिरोह है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमानपुर से रिलेटेड है, और वहाँ का रहने वाला फरहत जो है वो आया हुआ था बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में दिलशेर नाम का एक व्यक्ति है जो इस काम को बहुत पहले से करता था। वो झाड़ फूक और तांत्रिक टाइप की चीज़ें करता था ताकि लोगों को झांसा, जो भी लोग कष्ट में होते थे, जो भी लोग परेशान होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे और उनको झाड़ फूक के माध्यम से कुछ ऐसा बताते थे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनसे टच में आते थे, फिर उनकी प्रॉब्लम को समझ के बोलते थे, जैसा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा जितना पैसा दोगे उसका दोगुना हो जाएगा। हमारा एक फरहत भाई है वर्धमानपुर का, और इसका दिलशेर का जो भतीजा था वो इस काम में इसके सहयोग करता था। ये 3 लोग मिलकर के, और इनके साथ इनके जो को ड्राइवर थे, ये 5 लोगों की पूरी गैंग थी। ये अलग अलग जिलों में इन लोगों ने कई लोगों को ऐसा धोखा दिया हुआ है, और धोखा दे करके लोगों के पहले क्या करते थे, लोगों को डेमो दिखाते थे। जितने भी लोग मिले हैं इन सब की अभी पूछताछ चल रही है, और इस पूछताछ से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारे विक्टिम भी हैं जो स्वयं प्रताड़ित हैं, जो वहाँ आए हुए थे इसलिए कि इनके जो पहले के ठगे हुए के पैसे थे वो शायद और इधर जो है बरामद हो सकते हैं, और इनको फ़ायदा मिल सकता है, उनके पुराने जो पैसे ठगी हो गई उसकी रिकवरी हो पाए, उस आस में भी कुछ लोग आए हुए थे। और ये लोग डेमो देते थे पहले इन सब लोगों को बुला करके। कमाल खान नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें मेन डेमो देता था। वो इन लोगों को ले जाता था मोतिहारी, कभी नेपाल, मोतिहारी और नेपाल के अलग अलग होटलों में लोग रुकते थे, वहाँ पे ये हाथ की सफाई दिखाते थे कि देखो कैसे एक गिड्डी 500 के लिए और उसके 2 गिड्डी बना दिए, ऐसे ही तुम लेकर के आओ। तो लोग कहते थे कि नहीं भाई अभी हम लेकर आएंगे पैसा, तो कहते थे नहीं पूरा पैकेज लो तुम, बड़ा पैसा इकट्ठा आएगा तभी काम होता है, 90 लाख, 95 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस टाइप का वो करते थे। फिर ये लोग मिलकर आपस में ढूंढते थे कि हम 5 लोग हो जाते हैं तो शायद हम 500 के इकट्ठे ट्रिपल हो जाए, तो लालच भी था इसमें, लोगों को लालच रहता था अपने पैसे डबल ट्रिपल होने का। और ये लोग हाथ की सफाई और झांसा दे करके, केमिकल का उपयोग करके कलर, जो कपड़ा कागज़ है उसका कलर चेंज करने का जो झांसा होता है और हाथ की सफाई, इसमें बहुत बारीकी से लोग करते थे। पैसा डबल नहीं होता था, पैसा उतना ही रहता था, और रादर जो पैसा आदमी लेकर आता था डबल कराने के लिए, उस पैसे को ये बाद में उसी से झांसे के नाम पे ले जाते थे कि अभी तो ये इसमें से जो केमिकल है वो सूखा है, कच्चा है, और अभी इसमें 2-4 दिन और लगेंगे, रुकिए, धीरे धीरे धीरे धीरे करके, और वो पैसा पूरा गायब कर देते थे। तो ये
1: इधर बैकुंठपुर के कथालपुर गांव में एक महिला को सरकारी कागजों में मृत दिखाकर जमीन हड़पने की कथित साजिश का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर प्रमिला कुंवर उर्फ प्रमिला देवी ने बैकुंठपुर थाने में 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि प्रमिला देवी की शादी सुशील नाथ पांडे से हुई थी। शादी के बाद उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी और पुत्र प्रिंस कुमार का जन्म हुआ। कुछ वर्ष पूर्व उनके पति की मृत्यु हो गई। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनके पुत्र को अपने विश्वास में लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों में जालसाजी की। महिला का कहना है कि जमीन हड़पने के नियत से सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उनकी जगह मालती देवी का नाम दर्ज करा दिया गया, जबकि प्रमिला देवी जीवित हैं। अब उनके आवेदन पर पुलिस ने 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों से आज कई आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में भेड़िहारी टोला रोड पर, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पुलिस ने छापेमारी की और यहां से धनु कुमार को शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह हजियापुर पोखरा थाना नगर का रहने वाला है और महेश रावत का पुत्र है। इसके पास से 104 पीस शराब की पैकेट और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल मिली है। मानसून से पहले डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव को लेकर जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर व्यापक जागरूकता

0: अभियान चलाया गया। सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों पर और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू से बचाव एवं रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सभी संबंधित कर्मियों ने डेंगू नियंत्रण को लेकर शपथ भी ली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच डेंगू के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और संभावित संक्रमण को समय रहते रोकना बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संतोष यादव हत्याकांड में मीरगंज के थाना अध्यक्ष को किया गया निलंबित। बैकुंठपुर हत्याकांड में 4 आरोपी भेजे गए जेल। मीरगंज के पीपरा में हुई फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केमिकल से नोट बनाने वालों के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। और जिंदा महिला को मृत बताकर जमीन हड़पने वाले 14 लोगों पर केस दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-097-06-575।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: रियाज रेट्रो।
12: अरे यार, ये मी टू के चलते रोमांस का क्या होगा? क्या अब फ्लर्ट करना भी जुर्म हो जाएगा? किसी की तारीफ करना गुना? हर बंदा इतना केयरफुल हो जाएगा तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। नोक झोंक, शरारत, रूठना मनाना, दिल लगी से लेकर दिल जीतना, ये सब क्या अब किताबी बातें बन के रह जाएंगी? इश्क क्या अब सिर्फ शायरी की किताबों में और दिल का धड़कना सिल्वर स्क्रीन पर ही महसूस करेंगे हम? मी टू ने मोहब्बत को ही निगल लिया है क्या, आशिकी को खा लिया है? मैं और इन तमाम बातों पर मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, बकवास।

कॉमेडी, ट्रेजेडी, बर्लेस्क, हॉरर सब देख पढ़ सुन चुके हैं हम पिछले कुछ हफ्तों में। मी टू के चलते इंसानी फितरत के हर पहलू पे ताज्जुब कर चुके हैं। जब मैल निकलता है तो उसके साथ जो बदबू आती है मानो नाक में ही नहीं जहन में समा गई है। सच तो है कि मर्द औरत के रिश्ते पर से ही भरोसा उठने लगा है। दोनों को अलग रखो, आपस में मिलने ही मत दो, एक दो सेंचुरी जब तक सबकी अकल ठिकाने ना आ जाए। फीलिंग तो ऐसी ही आती है। पर कहा ना लता जी ने, यह प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। फिल्म आम्रपाली, संगीत शंकर जयकिशन, बोल शैलेंद्र। फिर प्रेम का क्या होगा इस सब में? अगर प्रेम सलमान खान का नाम हो तो मुझे नहीं पता, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लव, तो फिर ये सवाल ही मुझे इतना डिस्टेस्टफुल लगा है पिछले हफ्तों में कि क्या बताऊं। और मैं हैरान हूं उन सब लोगों से जो कह रहे हैं मी टू विल बी अ डेथ नेल टू रोमांस। मतलब इश्क और छेड़खानी, प्यार और परेशानी के बीच में फर्क नहीं कर पाते क्या ये लोग? ये कैसी इनसिक्योरिटी है जो कहती है कि अगर चेप होने के मौके ना मिले तो हम मोहब्बत नहीं कर पाएंगे? आई मीन इनक्रेडिबल। किसी की आंखों में, किसी के चेहरे पर, किसी की बातों से कंसेंट साफ झलकता है अगर सामने बैठा हुआ इंसान थोड़ा सा भी समझदार और सेंसिटिव हो। और किसी की ना में उसकी हाँ नहीं छुपी होती भाई, नो मीन्स नो तो पता ही है ना अब हमें। अब रही बात डाउट की कि ठीक से पता नहीं चल रहा कि अगला इंटरेस्टेड है या नहीं, इट्स रियली वेरी सिंपल देन। अगर ठीक से पता नहीं चल रहा है तो पीछे हट जाओ। हो सकता है कई साल बाद पता चले कि चांस ले सकते थे, अगला शर्मा रहा था, आपके जोर दबाव के इंतजार में था, तो सॉरी वो गाड़ी निकल गई, अब कुछ नहीं कर सकते। जब आशिकी अपना चेहरा बदलेगी तो शर्म झिझक को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। नो मीन्स नो का एक और पहलू भी तो है, यस मीन्स यस भी तो फिर होना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो।

0: नैन डरेंगे, शर्म आएगी तो सामने वाला पीछे हट जाए, यही बेहतर है। कोहरा से ये नैन डरे डरे, आवाज और संगीत हेमंत कुमार, बोल कैफी आजमी। शर्म आती है मगर लता जी की आवाज में, फिल्म पड़ोसन से आरडी राजेंद्र कृष्ण।
1: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: मैं रिया, और मेरे हिसाब से ये मी टू मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था और इसका वक्त आ चुका था। इट्स हाई टाइम कि हैरेसमेंट को नॉर्मलाइज ना करके हम तमीज और तहजीब को ही नॉर्मल समझें। मैं उस दिन किसी से कह रही थी कि थैंकफुली मेरी पूरी जिंदगी में मुझे ऐसे हादसों का सामना कम करना पड़ा है। मैंने शायद अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर अच्छे लोगों के साथ ही काम किया है, एक दो एक्सेप्शंस छोड़कर, वो भी स्ट्रेंजली हाल फिलहाल में। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा अदरवाइज इतने सालों में कि मैं कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ। तो मैं जिससे बात कर रही थी, उसने कहा, सो लकी यार, यू वर्क विद सच डिसेंट मैन। मैंने कहा, क्या लकी? नॉर्मल नो, शुडंट दैट बी नॉर्मल? शराफत को अब हम गुड लक कहेंगे क्या? एक बात है, पर शरीफ लोगों को भी तो इश्क हो सकता है, और वो काम के स्पेस में हो ये मुमकिन है, तो फिर वो बेचारा शरीफ इंसान क्या करे? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बॉस सबॉर्डिनेट में तो नो क्वेश्चन, ये तो मैं मानती हूँ। एंड डूड, इफ यू आर साइनिंग हर पेचेक्स, देन जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इट। पर ऐसा अगर ना हो तो दूसरी डिपार्टमेंट के किसी लड़की पर दिल आ जाए तो फिर तो फिर मैं जिस डर, शर्म वगैरह की बात कर रही थी, उस पर थोड़ी और नजर डालें इन दो डिलाइटफुल गीतों के बाद, अबाउट रोमांस एट द वर्कप्लेस।

रफी साहब, गीता दत्त, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55, ओपी नैयर और मजरू साहब की मस्त वर्क प्लेस रोमांस सॉन्ग, बिल्कुल उससे पहले वाले की ही तरह छोटी सी बात से जाने मन येसुदास और आशा जी की आवाजें, संगीत सलिलदा, बोल योगेश। सच तो है वर्क प्लेस इश्क का मजा ही कुछ और है, और जहां हम अपने दिन के 8-10 घंटे हफ्ते के 5-6 दिन बिताते हैं, आशिकी वहां नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे। आजकल तो फैमिली के साथ भी छुट्टियां कम लेते हैं यंग सिंगल वर्किंग किड्स, ज्यादातर ऑफिस ऑफसाइट्स पर ही जो जाना होता है। तो फिर ऋषिकेश के उस व्हाइट वाटर राफ्टिंग ट्रिप पर बॉनफायर के इर्द गिर्द बैठकर, जब बॉस अपनी सारी ड्रंकन कहानियां सुना चुके हों, एक कॉलीग गिटार निकालकर गाने लगा हो, तब उस नई ज्वाइनी के साथ आंख ना मिलाए, ओवर द क्रैकलिंग वुड एंड लाइट शैडो ऑफ द फायर, दैट फिर क्या मजा। सच में ही आपके साथ सिंपथाइज करती हूँ, और तभी मैं डर और शर्म के बारे में बात करना चाहती थी। फियर इज रियल, और अगर कोई लड़की डर रही हो तो वो उसकी आंखों में दिख जाएगा। वो कितनी भी फौलादी क्यों ना हो, डर का कोई ना कोई साइन तो होता होगा ना। आंखें पथरीली, बाहों का अपने में सिकुड़ जाना, शोल्डर्स टेंस, यार आंखें खुली रखोगे तो डिस्कम्फर्ट दिख जाएगा यार, प्लीज 4 कदम पीछे हट जाना ही ठीक रहता है ऐसे में। डरा के कौन सा इश्क होता है भाई। और शर्म, ये फंडा तो मेरी समझ के बाहर है, कोई अगर अच्छा लग रहा है तो शर्मा शर्मी में क्या टाइम वेस्ट करना। ब्लशिंग एट अ कॉम्प्लीमेंट और फीलिंग अ लिटिल एम्बैरेस्ड जब कोई बहुत प्यार से देखे, वहां तक ठीक है, पर इतनी शर्मो झिझक की अगला कंफ्यूज ही हो जाए कि आप सिग्नल क्या दे रहे हो। अगर बंदा अच्छा लग रहा है तो थोड़ी एंथुजियाज्म दिखाओ यार, वरना बेचारा कैसे समझेगा कि आप चाहते क्या हो। अरे इफ वी वांट गाइस टू अंडरस्टैंड आवर नो, तो यस को भी साफ क्लियर करना पड़ेगा ना, कि हाँ अच्छा लग रहा है, बोलते रहो।

0: The point is that consent is everything. यही गाना किसी एक से charming लग सकता है और किसी दूसरे से creepy. और ये सिर्फ man to woman नहीं, woman to man भी है. वो attention हमें चाहिए हो तो सब खूबसूरत है, शायराना है. और नहीं चाहिए तो सर दर्द है. It is as simple as that. क्या सुना आपने? जो बात तुझ में है, फिल्म ताजमहल, आवाज रफी साहब, संगीत रोशन, बोल साहिर. उससे पहले ऑफ कोर्स किशोर दा फ्रॉम बुढ़ा मिल गया, रात के लिए ख्वाब, आरडी मजरू.
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान. पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज. ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर. कॉल 9170856587.
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती.
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज.
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को.
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू.
4: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा.
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला.
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए.
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं.
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज.
7: रियाज रेट्रो.
0: द थिंग इज, ये जो रिडिकुलस स्टूपिड ब्रेन डेड डिबेट है ना, कि फिर उसने शॉर्ट स्कर्ट क्यों पहना, सज सवर के क्यों आई, देर रात को क्यों निकली, अकेली क्यों गई, ड्रिंक क्यों किया, उफ यार. इस बात के दो एस्पेक्ट्स हैं. अकेली जाना, ड्रिंक करना, रात को निकलना पर्सनल चॉइस है एंड नोबडी एल्सेस बिजनेस. द सिटी, द कम्युनिटी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेफ एंड क्राइम फ्री. अगर मुझे रात के 3 बजे जॉगिंग करने का मन भी हो तो मुझे ये दिलासा होना चाहिए गवर्नेंस और बिरादरी से कि मैं महफूज हूँ यार. रही बात शॉर्ट स्कर्ट, रेड लिपस्टिक, ब्राइट ज्वेलरी की, हेलो ओके. कोई लड़की अट्रैक्टिव कपड़े ये सोचकर नहीं पहनती कि वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी. ऑब्वियस है, अच्छा दिखने के लिए ही पहना होगा. अच्छा दिखना और आओ मुझ पर मेरी मर्जी के बगैर कूद पड़ो, सेम चीज है क्या? क्या बेवकूफी है यार. मे बी ड्रेसिंग अट्रैक्टिवली जस्ट मीन्स आई वॉन्ट टू लुक गुड एंड इफ आई लाइक यू आई वॉन्ट यू टू लाइक मी बैक. और फिजिकल अपियरेंस उस लाइकिंग का एक हिस्सा है, शायद पहला. अब हर वो बंदा जो जिम जाता है, टाइट टी शर्ट पहनकर स्लीव्स को रोल अप करता है, बट हगिंग जीन्स पहनता है, हर ऐसा लड़का क्या ये चाहता है कि कोई भी लड़की उस पर कूद पड़े? नहीं ना. तो फिर Why is it so difficult to understand कि अगर कोई लड़की attractively dressed हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना consent घर पर छोड़ाई है. उसकी रजामंदी फिर भी जरूरी है ना.

This is the ultimate song for the Me Too campaign, I feel. मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं. Exactly. अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकाते रहोगे, खुद ही सारे ख्वाब बुन लोगे, हाथ पैर लाइन मारते रहोगे तो क्रीप ही कहलाओगे. अगर लड़की ने 3 बार कॉफी के लिए मना कर दिया है तो 4th बार मत पूछो ना. फेसबुक फ्रेंड्स तो बन गए हैं पर आपकी किसी पोस्ट को लाइक नहीं करती, कभी कॉमेंट नहीं करती. Maybe there's a message there. Try and hear it. कंधे पर हाथ रखना, कपड़ों या फिगर पर कमेंट करना, ओवर फैमिलियर पर्सनल रिमार्क्स मारना, रात के 2 बजे कॉलीग को रैंडम यूट्यूब वीडियोस भेजना. डूड, ये आशिकी नहीं स्टुपिडिटी होती है, खासकर जब उस तरफ से इन तमाम चीजों पर कोई रिस्पॉन्स ना आ रहा हो. देन गेट द मैसेज. मैं आपके साथ रिया, और मुझे ये भी लगता है कि डाउन द एजेस कई ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जिन्होंने हैरेसमेंट को सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं बल्कि रोमांटिसाइज किया है अपने काम से. मिर्जा गालिब, जिनकी मैं बहुत बड़ी मुरीद हूँ, उनका ये शेर सुनिए. इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही. सो ब्यूटिफुल बट सो स्केरी. कोई भी पढ़ा लिखा स्टॉकर इस शेर को अपना हथियार बना सकता है, गालिब की मीनिंग कुछ भी रही हो. ऑन द अदर हैंड, याद है मैंने अपने साहिर लुधियानवी एपिसोड में कहा था कि साहिर वॉज अ नेचुरल एफर्टलेस फेमिनिस्ट, अ ट्रू प्रोग्रेसिव. उनके इस गीत की ये लाइंस भी कोट की थी मैंने, और आपके लिए आज ये ना चलाया तो ये एपिसोड अधूरा रहेगा. इनफैक्ट रिसेंटली शुभ्रा ने भी यही लाइंस मुझे ट्वीट किए. सच में व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेजाइल एग्जांपल ऑफ सीकिंग कंसेंट. प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं.

तलत महमूद गा रहे हैं और आशा जी सिर्फ हम करती हैं। दैर हमिंग इज ऑलमोस्ट लाइक अ म्यूजिकल साइन ऑफ कंसेंट, है ना। फिल्म सोने की चिड़िया, ओपी नैयर और जैसा कि पहले ही कहा, द सब्लाइम साहिर। अब जो लोग कहते हैं कि परमिशन मांगने में, इजाजत लेने में रोमांस खत्म हो जाता है, वो इस गीत के बाद क्या कहेंगे। बाकी रही बात सेक्सुअल प्रेडेटर्स की, जो सिर्फ सिग्नल गलत नहीं समझते, उनको सिग्नल से कोई मतलब ही नहीं, जो यूं ही बस स्कोर करने की आस में रहते हैं, तो उनके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। दे आर नॉट इवन वर्थ अ सिंगल मेंशन। उनके साथ जितना बुरा हो, उनकी जितनी नेमिंग शेमिंग हो, वो कम है। बट लव, लव इज अ मेनी स्प्लेंडर थिंग। वर्क प्लेस में भी हो सकता है और आजकल ज्यादातर वहीं होता है, पर रोमांस की अपनी नाजुक वोकैबुलरी है जो किसी मीटू से नहीं मरने वाली, क्योंकि नथिंग कैन स्टॉप टू हार्ट्स फ्रॉम कनेक्टिंग। मन का मेल, दिलों का खेल, ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बस इसमें मर्जी ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। रोमांस कैसे मर सकता है मीटू के चलते, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, रोमांस तो और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस रोमांस में दोनों की चॉइस भी होगी और वॉइस भी। सही मायने में वो एक इक्वल रिलेशनशिप होगा, जहां दोनों दिल खोल के कहेंगे, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद मैं रहूंगा एक बार फिर से आपके साथ ठीक 11:10 पर गीत मेरे मनमीत लेकर। तब तक के लिए आदाब,
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
4: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Vaghmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रमजिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रमजिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रमजिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिंजन 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: मैया।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: बनारस से रमजान।
2: जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है।
2: तो क्या हो रहा था?
1: ये पावर लोग चलाते हैं, वही काम हो रहा है।
2: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: बाजी का नदी का लिखा लिखा ले आते
2: और सुनाना भी है।
1: जी हम सुनेंगे आपने
2: गाना आपके
1: क्या बजेगा आज कर?
2: जी आज या कल दोनों में कभी भी आ सकता है 5 से 7 के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो,
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: गुड मॉर्निंग सोनी मैम।
6: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: कैसे हैं मैम?
6: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: जी मैम, भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
6: जी जी, तो क्या हो रहा था अभी?
5: समय हो गया तो ट्रैक करते करते अब लगी।
6: अच्छा अच्छा,
5: और अभी उधर क्लास ले रहे थे तो बच्चों की टिफिन हुई तो बोले के ट्रैक करके जल्दी लग जाती तो सुबह जल्दी लग गई।
6: ये बढ़िया है, लग गया ना।
5: जी
6: जी,
5: आज सुना दीजिए मैम नगीना फिल्म का गाना, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।
6: जी,
5: तूने बेचैन जितना ज्यादा किया, तेरा हो गया मीन तेरी हो गई। जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिमझिम के जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर हैं देश विदेशों में सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
6: चलिए तो प्ले करेगा ना?
5: जी मैम, मैं कौन बोल रहा हूँ समझ गए ना मैम?
6: सुधीर कॉल बात कर रहे हैं।
5: जी जी जी, बिल्कुल मैम।
6: जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल किया।
5: थैंक यू मैम।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में। चाहे पहले वहाँ से साइड हो जाइए जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से
1: है। अनुप कुमार, ग्राम प्रका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड से बोल रहे हैं
0: जी। क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
0: क्या हो रहा था अभी?
1: खाना आना खा के लेटी थी।
0: अच्छा अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: अख मेरी यार की दुखी, आँखों में आ गई लाल।
0: एक बार और बताइए नाम गाने का।
1: अख मेरी यार की दुखी, आँखों में आ गई लाल।
0: और सुनवाना भी है
1: ना?
0: गाना सुनवाना भी है?
1: हाँ सुनवाना है।
0: तो प्ले करे गाना आपके?
1: हाँ प्ले कर दूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: रिकॉर्डिंग ना सर?
0: जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, शाम को चलेगी 5 से 7 के बीच में।
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय चॉइस में कॉल।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 94.4 एफएम में।
1: हमको गाना सुनना है सर।
2: जी सुनवाएंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
1: नाम गाने का है करीमा पांडे की आवाज में, नफिया नफिया लेला उधार राजा जी, रास्ता चली ले तो मांगेला सुनार राजा जी।
2: और सुनवाना भी है
1: जी। श्रवण साहब एक दोस्त है बगल में, वो रेडियो भी बनाते हैं और रेडियो वो भी रखते हैं।

0: हम दो आएंगे रेडियो रखते हैं।
1: चलिए तो प्ले करें गाना।
0: जी मेरा नाम यह है जोगी शर्मा और मेरा घर है एक डेरवा।
1: जी
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल।

करा में राजन भैया मरद लोग के दोस्त नहीं थे। जब गाना नहीं के गढ़ल रहा और जब उनका भी पैसा नहीं करा तो मेरा रुपया पैसा उनका के पाल जलू इमोशनली ब्लैकमेल करा था गाना।

अभी हम सब सवर के अपना सखी लोग के साथ बाजारे जाइला आ जब भी वो देखेला तो सबके सामने हमरा के टोके लागेला तातना सजल सवरल के का फायदा कि लोग कहला कर्जा कर के बनी ले बड़ी तारा ढेर पता बा सच।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी जी सोनी जी, क्या हाल चाल?
3: बिल्कुल बढ़िया रहो, वो बताए कैसा बने?
2: ठीक बने, पहला कॉल लग रहा?
3: हाँ, पहले कॉल
2: तो बता रहे कहीं था, मन बता दे रहा चाहे कहीं देखे तो लग सब लगन चल रहा था बाकी ना लगन चल रहा है ना
3: लगन तो शुरू है भाई, था बर्फ होता नहीं आवाता।
2: आप लोग के तरफ बारिश भी बहुत हो रहा है एकदम पूरा एकदम
3: काले भाई रहे बारिश बढ़िया वाला एकदम
2: काले भाई रहे ना यही सुन हमने एकदम ठंडा रहा था रात में हमने 3-4 दिन से बहुत ठंडा रात लगा था तो हम एक तरीके निकाले के पड़ गए
3: सब सब चीज के रखा गए लेकिन अब सोचल जात रहे ना निकल जाए बाकी ठंडा हुई तो रखे के उड़ाई के पड़ गए निकाल
2: के बर्दाश्त होगा ना करला है।
3: चलिए तो बता दी गाना कौन सुने के बाद?
2: गाना सुने के बाद धर्मवीर मूवी के।
3: कौन मूवी के?
2: धर्मवीर।
3: अच्छा,
2: ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। और सुना एक बार सबसे पहले राम जी प्रसाद को और नूर आलम भाई को, सगीर आलम भाई को और मनान भाई को और रहुआ के जितना वाला था सब कुछ सुनवा हमने की जितना रोशन में धना काम करते हैं सब कुछ सुनो क्या ये आयर बोस चली कि ना आज
3: चली रिकॉर्डिंग के बाद
2: ठीक है।
4: ओ मेरी महबूबा

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिजर्वेशन नंबर 2.4।
0: उमा शंकर दिल्ली से।
1: जी, कैसे हैं उमा शंकर जी?
0: ठीक बा
1: जी।
0: और सब मौसम मौसम कैसन बा?
1: तो बढ़िया भाई। यहाँ
0: आज छुट्टी मरले रही है, ऐसे कहिए कि तनी बात कर ली।
1: जी जी, बिल्कुल बढ़िया कहनी है जी। तो गाना कौन सुने के बाद?
0: गाना वो भरत शर्मा के बा, होता है शरीर आत्मा है गौरैया।
1: जी, और सुनवाई के भी बा?
0: सुनवाई के बारी हमारे धर्म पत्नी बारी सविता देवी।
1: अच्छा अच्छा।
0: भाई भाई बा धनेश मिश्रा, रवि जहाँ हुई तहाँ रवि सुनी, और हमारा संगे बहुत लोग बा काम करे वाला वो लोग सुनेला।
1: अच्छा,
0: एगो बारन बैजनाथ शर्मा वो सुनेला।
1: जी चलिए,
0: और सब बढ़िया बना?
1: जी जी, सब बढ़िया बा। गाना प्ले करी?
0: हाँ जी, हाँ जी, सुना दी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: दीदी नमस्ते।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: मैं सविता बोल रही हूँ दिल्ली से।
6: जी कैसी हैं सविता जी?
5: ठीक हूँ।
6: तो क्या हो रहा था अभी?
5: अभी काम धंधा करके बैठी हूँ, क्या होगा।
6: तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
5: रोटी रोटी बेलाएंगे परी।
6: और सुनवाना भी है?
5: सुनवाना भी है। हाँ, धनेश कुमार मिश्रा।
6: जी जी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइक है इसमें कॉल।
5: Thank you.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्यार एफएम में।
0: जी बहना जी, प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, मैं राजीव यादव, ग्राम प्रेंका, श्रीरामपुर, डेरा सरीला, राठ मुस्कर, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, और दो महीने बाद हो सका है शामिल हो रहा हूँ।
1: जी तो क्या हाल चाल है?
0: हाँ बहना जी, तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा व्यस्त रहे, अभी एकदम ठीक ठाक है। घर में मम्मी, पत्नी, बच्चे सब कुशल मंगल में है।
1: चलिए बढ़िया बात है। तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना सुनेंगे उज्जैन के आगे जी, उज्जैन के पीछे जी, उज्जैन के आगे पीछे जी, जी मैं उनकी साली हूँ कसम से जी जा जी।
1: और सुनाना भी है?
0: हाँ बहना जी, हमारे मित्र हैं शारदा प्रसाद जी, मथुरा वृंदावन से हैं, राम शर्मा जी हैं, श्री यादव जी हैं, उदय भानपाल जी हैं, अनुप कुमार राजपूत जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, पालन यादव हैं, और रेडियो झिमझिम की प्यारी बहना आपको इसी गीत में शामिल कर रहे हैं।
1: गाना
0: कुछ लाइनें कह दें बहन, इजाजत हो तो। हर पर्वत को झुका नहीं सके, हर दरिया को सुखा नहीं सकते, आप हमें भूल जाएं भले ही, लेकिन हम रेडियो झिमझिम को भुला नहीं
1: लेकर
0: गाना जी। बहना जी, काम नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 104 FM में।
2: थैंक यू मैम, मैं अहमद अली, सरिया वार्ड नंबर 1। कैसी हैं मैम?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हम लोग भी अच्छे हैं, तबीयत अच्छा है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल बढ़िया है।
2: अभी तो गर्मी बढ़ रही है यार,
1: फिर भी ठीक ही है मौसम आज।
2: हवा चल रही है,
1: हवा ठंडा ही चल रहा है, गर्म हवा नहीं है।
2: और बताएं, नाश्ता पानी हुआ है क्या मैम?
1: जी हाँ बिल्कुल हो गया है, अभी तक बाकी थोड़ी रहेगा।
2: चलिए आज मेरे को सॉन्ग सुनाइए सूर्या मूवी से, प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल सामने।
1: सुनाना भी है?
2: हाँ सुनाना है। सबसे पहले तो आपको, अटारी को, कमरा अंदर सीट को, राघव जी को, दिलीप भाई को
1: जी।
2: और जो भी रेडियो रिमझिम यहाँ से भी सुन रहे हैं।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
2: थैंक यू मैम, सलाम अलैकुम,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल की।

0: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: क्या हाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मेरा भी बढ़िया है। आप भूल गए थे, गणेश का भूल गए थे?
0: बिल्कुल नहीं भूले हैं, भूले होते तो नाम पूछते नहीं।
1: नहीं, मेरे दिन साहब तो भूल गए हैं।
0: ना बिल्कुल नहीं भूले हैं। आप नहीं आ रहे हैं शो में?
1: तो मैं अभी काम नहीं मिले थे, जानते हैं कि शादी ब्याह में थोड़ा फंक्शन हो जाता है, इधर जाइए इधर आइए।
0: समझ रहे हैं,
1: अभी तो टाइम नहीं है, अपन जा रहे हैं पूजा करने। आज दूसरा कॉल में मेरा लग गया, एक बार दूसरा कॉल में लग गया।
0: चलिए बढ़िया है, मन से किए इसलिए लग गया।
1: आप नहीं आए शादी में, ये बात तो नहीं मिली थी।
0: नहीं आ पाए, मौसम भी देखे आप कैसे हो गया था।
1: चलिए मेरे बहुत बढ़िया शादी भगवान के तरफ।
0: जी जी, अभी तो जिसका शादी है उसका हाथ कलेजा पे ही है कि कब क्या हो जाए, बारिश आ जाए तूफान आ जाए। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: कोई भी बता दीजिए, मंदिर का है कोई भी बता दीजिए।
0: नहीं नहीं आप ही बताइए।
1: कोई भी बता दीजिए।
0: तो भी कुछ तो बताइए, हिंदी भोजपुरी किसकी आवाज में?
1: हिंदी कोई भी,
0: कोई भी
1: ये आप सुनते हैं आपको अच्छा लगता है?
0: अरे वैसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि सर के तरफ से अलाउ नहीं है, उनके तरफ से है कि गाना अगर कॉल आया तो गाना बताना ही है, नहीं तो फिर आप गाना नहीं बजाइए।
1: कोई भी गाना बजा दीजिए हिंदी।
0: हिंदी चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: मेरे लिए थोड़ा ध्यान दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: डेडिकेट करते हैं आपको।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
5: Hello, hello, hello, hello, hello.
4: Bhage bhage firte hain.
6: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो सोनी मैम, प्रणाम।
8: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: और सर?
8: सब बढ़िया, आप बताइए।
7: ये बिहार के नेटवर्क ना सुधरी क्या?
8: आप बताइए, बिहार के नेटवर्क सुधरी कि ना सुधरी, अब हम कैसे बताएं?
7: बिजी बताओ था, एक बार फ्यूचर बताओ था, एक बार
8: रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी है पर तो कॉल आवा था से बिजी बताओ थे।
7: ना ना तो तो बिजी तो बताओ थे, फिर फ्यूचर बताओ था ना।
8: स्विच ऑफ कहे बताओ तो इतना नहीं है पता हमारा।
7: ये बिहार ना सुधरी
8: ऐसा ना कहीं। तो गाना कौन सुने के बाद बता दी?
7: भोजपुरी सुने के बाद ऐसे बबीता सागर के पूर्वी बजा दे चूल्हा लगे जोड़ी
8: और सुनवाए के भी बात।
7: वे जितना लिसनर लोग सुनो तलो सुनी लो, खास करके रामा जी प्रसाद वाला सुन लिया और ये जब भैया भाभी बोल रही बोलो
8: रवि के फोन अभी ना आई बा
7: बीजी
8: बाली तक कबले जाए के बा गाँव से उनका
7: कोई पता ना
8: अभी पता ना चली ठीक बा कहीं जास तो फिर वही जैसे जुड़ा घर पे तो टाइम मिलत ना बा
7: करे ठीक है तो बजा दे।
8: जी जी बिल्कुल। हेलो माय चॉइस में तो कोशिश करे नहीं कि हम गाना ना काटी
7: जैसे ना चार पाँच मिनट के तो ऑर्डर चार पाँच मिनट के बना ये सब थोड़ा लाइव लाइव शो होता बड़ा बड़ा होला
8: तो बड़ा बड़ा होला तो शुरू वाला जो बतिया रहला वो काट देवे नहीं गानवा तो रहे करे
7: ये सब बाकी कोनो बेकार नहीं छे बढ़िया बा लम्बा होला गाना लेकिन बढ़िया है। चलिए ठीक ठीक बा
8: बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के।
9: Kitty.

0: बहुत ही अच्छे झाल वादक और कोरस हमारे छोटे बाबा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हम दिन से
1: हमारियों के संगीत लाइन में कम से कम 35 साल हो गए, लेकिन तोहरों एगो अलग स्थान था भोजपुरी में जोड़ा नहीं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना

0: कहाँ से बात कर रही हैं साईं?
1: मालदा
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: अभी तो अपन फोन लगा रही थी।
0: तो गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: ये सुना लीजिए, मुबारक मुबारक ये शादी तुम्हारी।
0: मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी।
1: जी
0: सुनवाना भी है?
1: सभी दोस्तों को मुबारक को भी डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: ओके चलिए, तो प्ले करें गाना आपके।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मै कॉल,
1: बाय
0: बाय।

तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

0: हाय आईफोन वाला आजो जाके ब्याह कर, ब्याह के मजा लेबू दूसरा से आईफोन चलेबू हमर तोरी मैया के पहिया पूंजी।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: भक्ति को सबसे सरल कर दिया पूज्य चरण स्वामी प्रेमानंद जी महाराज,
2: लेकिन नाम की महिमा आपने बहुत बताई है।
3: राधा रानी के परम प्रेमी संत, आपके योगदान ये तो बहुत ही सराहनीय है।
4: और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए। युवान में जो सर्वेश्वरी के प्रति भाव उत्पन्न करे हुए वो एक अद्भुत, वो अद्भुत है। और वाही के लिए चर्चा है, एक शहर में चर्चा है। और वो जो किशोर जी के प्रति जो आप जगा रहे हैं सबन को, वो बहुत बहुत अत्यंत सुंदर है। और आपने जो अभी इतने संत बाहर विराज रहे हैं, महात्मा विराज रहे हैं, ये युवा युवा देखो।
5: हाँ, इस बस ये लाडली जी की मंद मुस्कान से महाराज जी नाम पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छा नौ
4: सेम टू से आप तो नाइन तक गए, मैं तो एको में नाइन। और हम तो किशोर जी से प्रार्थना करें प्रियाकांत सरकार दे यो ही कृपा बनाए रखें। और तमाम जो है
5: आप सब गुरुजनों का यही सुभाषिश ही मरे हुए हैं किसी काम के लिए।
4: ऐसे अभी तो असल में मरे तो वो है जीवित सब समान सुप्राणी, जिन हरि ही भगत हृदय नहीं आनी। जाके रोम रोम में सर्वेश्वरी राधा रानी को नाम बस रहे हो, वो तो सदा जीवन। और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए।
5: करे करावे आप सब जले बढ़ाई दे उनका खेल है साई।
4: और किशोरी जी करवा तो रही है ना।
5: हाँ महाराज, स्पष्ट उन्हीं के द्वारा सारा खेल चल रहा है, स्पष्ट चल रहा है। जैसे ना बटन दबे वैसे ही उनका सारा, हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं। बहुत मतलब बहुत कृपा उनकी।

0: मुझे के परम रसिक संत राधा रानी के परम प्रेमी संत प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, आप ब्रज की रस उपासना पद्धति में आपके योगदान ये तो बहुत ही सराहनीय है, जो पहले ऐसे दिखने में आया नहीं है। दूर दूर से बहुत तीर्थार्थ संसारी लोग आ करके आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करके आपसे वो उपासना पद्धति राधारणी के जो रस उपासना पद्धति प्राप्त करके भजन करके जीवन को धन्य करने में समर्थ हो रहे हैं। आपकी जो ये अभूतपूर्व योगदान ये शायद ही देखने में आया है, ये बहुत ही आनंद की बात है। जो बहुत सारे तीर्थार्थ जीव आकर आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करके जीवन को धन्य करने में समर्थ हो रहे हैं, आपके ये योगदान के लिए मैं बहुत राधारानी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप स्वस्थ रह करके इस तरह से ये प्रेम धर्म प्रचार में और आगे बढ़ते रहे, आपके जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन आनंदमय हो। राधारानी आपको सदा रक्षा करें, आपके हृदय को प्रेम भक्ति दे करके आपके हृदय को शांत करें।
1: वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा, उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं, उनकी वाणी सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले देखो भाई हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे? बोले जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है, हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते।
2: वृंदावन के एक महापुरुष, मैं एक बार दर्शन करने हम जा रहे थे, लास्ट जब वृंदावन की कथा थी तो मिले नहीं, कोरोना का भी प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे दो दिन पहले यात्रा में था, मैं विचरण में, तो एक क्लिपिंग उसकी प्रवचन की बताई वृंदावन की। सतवा बाबा भी कहते हैं कि सुनने जैसे महापुरुष है, बड़े नाम पर बहुत बोलते हैं, गजब, मुझे बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि कोई सिद्धांत की जरूरत नहीं, कोई यम नियम की जरूरत नहीं, तुम नाम लो, नाम जपो, राधा का नाम लो, दुर्गा का नाम लो, राम का नाम लो, केवल नाम। वो मुझे बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि एक घड़ी मानी 24 मिनट, 24 मिनट, 24 घंटों में केवल 24 मिनट तुम्हारे जो इष्ट देव उसका नाम लो, भाव जगे न जगे कोई चिंता नहीं। इससे मोक्ष मिले, धंधा ठीक से चले, रोग मुक्ति हो, ये सब सोचना बंद कर दो, वर्तमान जीवन में तुम्हें शांति मिलेगी। ये जो बहुत मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा बल भी तो नाम पर ज्यादा रहा, बोलते तो है सब कुछ लेकिन नाम की महिमा आपने बहुत बताई है। तो नाम का आश्रय करें। फिर वो वृंदावन वाले महापुरुष को याद करूं, मुझे बहुत अच्छा, सीधी सादी बोली में बोले जाते, पीले कपड़े पहनते, बात मैंने नाम पर बहुत, मुझे ये अच्छा लगा। नाम कलयुग में नाम पकड़ो भाई, ये कथा तो तुम भूल जाओगे, किस कथा में मैं क्या बोला, मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे याद दे तो पता लगे कि उस कथा में, ये तो सब रहती गंगा है। लेकिन पकड़ना है तो हरि नाम पकड़ो साहब, हरि नाम। युवान भाई बहन, परिवार के सब लोग सो गए और कोई काम न हो और किसी की नींद खराब न हो तो 5 मिनट निर्लज्ज होकर हरि नाम लो, हरि बोल, हरि बोल।
3: वृंदावन में एक बाबा रहते हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय से हैं और शारीरिक हालत उनकी जरा इतनी अच्छी नहीं है, अर्थात उनका जो दोनों किडनी है वो भी फेल हो चुकी है, और आज से नहीं बहुत दिनों से। तो बाबा प्रवचन दे रहे थे तो एक आदमी आया, उसने पूछा कि बाबा ये इतना राधा नाम जपते इसका कोई परिणाम नहीं मिलता। बस इतना कहा ही था कि बस बाबा तो एकदम रोष में आ गए। क्यों? क्योंकि जिस राधा नाम को वो कह रहे हैं कि मैं जिस राधा नाम के सहारे दहाड़ रहा हूं, बताओ, डॉक्टर कह चुके मेरी दोनों किडनी फेल, शरीर अब चलने वाला नहीं और वर्षों बीत गए कुछ हुआ नहीं, कहते प्यारे मैं राधा नाम के सहारे दहाड़ रहा हूं और मैं जानता हूं राधा नाम में कितनी शक्ति, और तू मेरे सामने खड़ा होके कहता कि राधा नाम का परिणाम नहीं मिलता, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने? तू करके तो देख, तू राधा नाम लेके तो देख, एक राधा नाम जगत को जीतने का सामर्थ्य रखता है, दुनिया को जीतने का सामर्थ्य एक राधा नाम रखता है। तू खुद ले तब बोलना मेरे सामने आके। बाबा मानो एकदम लड़ पड़े उससे, क्योंकि अपनी किशोरी जू के नाम का ऐसा अपमान कैसे देखें। बाबा कहते कि राधा नाम लो मत, राधा नाम को स्वाद से पियो। एक होता है भूख मिटाने के लिए भोजन करना, एक होता है स्वाद लेने के लिए भोजन करना। कुछ लोग बस भजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भगवान से डर है या उन तक जाना है, पर एक इसलिए नाम ले रहा है क्योंकि उसको नाम लेने में स्वाद आता है, उसको नाम लेने में रस आता है, आनंद आता है। तो बाबा कहते हैं तू सोच, तू किसके नाम के बारे में बोल रहा, तूने लिया आज तक कितना लिया बता, जो तू राधा नाम के ऊपर आक्षेप कर रहा है। वो सहारा दे रही है, मुझे दे रही है, मैं उसके सहारे बोल रहा हूं, आज तक जिंदा हूं राधा नाम के ऊपर, राधा नाम के भरोसे। बस एक बार विश्वास हो तो जाए, एक बार उनके चरणों पे प्रीति हो तो जाए, फिर काल की भी औकात नहीं कि आपको आकर के डरा सके, अगर श्री किशोरी जो आपके साथ है।

0: अभी हमारे वृंदावन में एक महात्मा है जो बहुत बढ़िया से सत्संग कर रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। हमने उनके बारे में सुना कि सुबह 3 बजे से सत्संग करते हैं। और लोग सोचते हैं कि 3 बजे तो वहां कौन जाएगा, पर सुनने वाले ऐसे प्रेमी महाराज 3 बजे वहां बैठने की जगह नहीं रहती है, इतने सुनने वाले वहां पहुंच जाते हैं। तो जब समय मिले, दिन में रात में जब समय मिले, तब प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने में कोई समय का बंधन नहीं है, जब अनुकूल अवसर होवे तभी कथा सुने।
1: सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है। इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा वृतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुण भेद सत्संगा सर्वसंगो कहो यमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी यज्ञ यागादि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण, सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भी अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हरि प्रसन्न हो जाते हैं।
2: बस जीवन का उद्देश्य यही है, एक इच्छा प्रिया जी से बात हो जाए, प्रिया प्रीतम हमारे मानव पटल से बस गए तो हमारा जीवन सार्थक चल जाए।

शरणागति आश्रित होना जरूरी है। नाम जपना भी आसान है लेकिन आश्रित होना बड़ा मुश्किल है। समर्पण बड़ा मुश्किल है, शरणागति बड़ी कठिन है प्यारे, शरणागति बहुत कठिन है। कृपा इसको कहते हैं कि जो मदन टेर वाले बाबा हैं, मैंने कईयों को देखा, रे भैया किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे चल रहे हैं, जीवन का कुछ पता नहीं, लेकिन आज कितने साल हो गए बाबा की दोनों किडनियां फेल।

0: खत्म ही कर दी। भक्ति को डराया नहीं, बड़े प्रेम से कहा, जैसे मर्जी लो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल जिसे दस हो। हर सत्संग का सार अंत में यही बताया है कि भैया राधा राधा तो जपना पड़ेगा। कह दो राधे राधे,
1: राधे
0: कोई मुश्किल नहीं है राधा नाम, फिर कह दो राधे राधे।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: ऑलराइट।